0: दादा है अब्बास अलमदार करता पा वफा है ये शेरों में फैला है ये हैदर की सदा है अब्बास अब्बास जो हर वो दिखा देगा कातिल को मिटा देगा तूफान भी उठा दे अब्बास ये है मेरा अब्बास
1: ये है मेरा अब्बास
0: ये है मेरा अब्बास।

तो सब उसने कट डाउन कर दिया है। ये सब किसकी सीरतों में से हैं जी? वे सीरतें बता रही हैं कि आज भी वो सीरत फ्रेश है, आज भी वो सीरत अप्लीकेबल है, इसलिए कि रूह पर उतरने वाली अगर कोई कुव्वत है वो अदालत। सलावत पढ़िए मोहम्मद आजिल फरज। कल हमने एक दूसरा रुख लिया था, वो रुख ज़रा सा डीपर है, ज़रा सा अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। किताब है मंसूब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, पसंद आप लोग ज़रूर पढ़ें इसको, किताबों के पढ़ने की आदत डालें। द लैंट्रीन ऑफ बैथ अल मिसबाह शरिया ट्रांसलेशन हो गई, अच्छा ट्रांसलेशन है, पढ़ सकते हैं। पहले गिला करते थे मौलाना किताब कहाँ मिलती है क्या है, आज सब कुछ आपके फिंगर टिप पर है। ज़रा सा इस गैजेट को सही इस्तेमाल करें तो बहुत कुछ हम लोग हासिल कर सकते हैं। इसमें मौला ने चार मामलात को बताया है, मामलात यानी ट्रांजैक्शन कनेक्शंस। एक मामला बंदे और अल्लाह के दरमियान है, एक मामला बंदे और उसके नफ्स के दरमियान है, मामलतो मअल्लाह, मामलतो मामला मअन नफ्स, मामलतो मअल खल्क, मामलतो मअ दुनिया। चार कनेक्शंस को इमाम ने बताया। एक नफ्स से मुतालक मामला है, एक अल्लाह से मुतालक मामला है, और एक मखलूक से मुतालक मामला है, और एक है दुनिया से मुतालक। यानी इंसान की जितने भी अगर एंगर्स देखें पूरे को कवर करते हैं ये चार चीज़ें। अगर ये चार चीज़ें इंसान समझ जाए तो जीना क्या है सिखा देती हैं, इंसान को लीड करना कैसे करना है ज़िंदगी वो बताती हैं। कल मैंने सरसरी तौर पर बताया था हमारे और अल्लाह के दरमियान राबेता कैसा होना चाहिए। ये बात याद रख लीजिए, दुआएं, ज़ियारतें, मुनाजातें जितनी भी हैं उनका ताल्लुक आज से है। बहुत गौर से सुनिए, यानी जितनी भी आप दुआएं इबादतें करेंगे आज की बात है, कल की बात नहीं है, ना ही कल के आने की बात। उसी तरह ज़ियारतें आज की बात हैं, कल की नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान को वॉर्न किया है कि अपनी ज़िंदगी में ये जो आज को बेहतर बनाना है तुम अपने आप को मरबूत कर लो ऐसी क़ुव्वत से जो ला मुतनाही है, जो जिसकी कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। हमने कई मरतबा मिसाल दिया है, बच्चे बैठे हुए हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ज़ीरो, बच्चे कहते हैं देयर इज़ नो वैल्यू, ज़ीरो की क्या वैल्यू हो सकती है। तो चलिए नंबर एक लिखिए, एक लिख करके लेफ्ट पर ज़ीरो लगाइए तब भी वैल्यू नहीं है। तो मालूम हर लैंग्वेज में राइट पे ज़ीरो लगाना है, तो एक के साथ राइटिस्ट होना है, अस्हाबे यमीन होना है, अस्हाबे शिमाल नहीं। तो कीमत अगर लगाना है तो एक ज़रूरी है और उसके दाहिने तरफ राइट की तरफ एक ज़ीरो लगाए, क्या कीमत हो गई? 10 हो गए। दो लगाएं, तीन लगाएं, हज़ार, चार लगाएं, 10,000, पांच लगाएं, 1,00,000। वन फॉलोड बाय एटर्निटी ऑफ ज़ीरोस, जितने ज़ीरो बढ़ते चले जाते हैं कीमत बढ़ती चली जाती है, जिस वक्त एक निकल जाता है सब ज़ीरो हो जाते हैं। इस्लाम यही कहता है, इन्ना सलाती व नुसकी व महियाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आई एम नथिंग, मेरे नज़दीक अल्लाह है और जब तक ये अल्लाह है मेरी कीमत है, अगर अल्लाह नहीं है तो मेरे पास कोई कीमत मौजूद नहीं है। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाला। इसीलिए मौला ने, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ अरफा में एक जुमला कहा है, मल्लदी फ़क़दक मा वजदक, परवरदिगारा जिसने तुझे खो लिया उसके पास क्या है, यानी जिसने अल्लाह को खो लिया उसके पास कुछ नहीं है, जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया है, जिसने अल्लाह को पा लिया उसने खोया कुछ भी नहीं है। करबला में इमाम हुसैन ने यही साबित किया, मेरे पास कुछ नहीं है मगर अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह है मैं ख़त्म होने वाला नहीं हूँ, इसलिए कि अल्लाह भी ख़त्म होने वाला। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाला।

हैं बॉडी लैंग्वेज। एक आदमी आया, एक मोमिन आया है मस्जिद में, दो रकात पढ़ रहा है जोहर की, तो पहलू में वो गूंगा मैसेज दे रहा है, मैं एक मुसाफिर हूँ, 10 दिन रहने वाला नहीं है, हिम्मत है तो ले जाओ घर, सलवार पढ़िए मोहम्मद। हमारी चीजों को गैर ने ले लिया, गैर जो है अमल कर रहे हैं, हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। बॉम्बे में वहाँ पर मरहूम ने आपके भेंडी बाजार में मुसाफिर खाना है शाह सुल्तान, इसी नीयत से रखा गया था कि जब मुसाफिरीन आए बाहर से यहाँ पर रह सकें, खुसन ज़ायरीन के लिए होना चाहिए एक ऐसी जगह जहाँ पर एक मोमिन आ सके और इत्मीनान से वहाँ रह सके। मस्जिद बेहतरीन जिसको कहते हैं, ये फ्रंट लाइन है मस्जिद। अगर ये मस्जिद कभी हो गई तो जामे भी कभी हो जाएगा। अगर मस्जिद को कमज़ोर कर दिया गया, जामे कमज़ोर हो जाएगी। आज दुनिया के किसी गोशे में इस तरह की मस्जिदों नहीं है जिस तरह से इस्लामी जमहूरी ईरान में नमाज जुमा हर शहर में एक जुमा होता है। तवज्जो कीजिए, आज पूरे बॉम्बे में एक जुमा हो, पूरा जुमा पूरे मुसलमान जमा हो, सारी दुनिया लरस जाएगी। आपका एक जगह जमा हो जाना ही कामयाबी है। लेकिन इसलिए उन्होंने क्या किया, ऐसे बांटा कि आप एक जगह जमा नहीं हो सकते, 50 ही लें भाई, कितने लोग हैं, रास्ते बहुत ख़राब हैं, पहुंच नहीं सकते, 50 ही ले बनाते हैं। इसीलिए कि असल जो हदफ है, जो मकसद है दीन का, वो आगे बढ़ने ना पाए। सलवार पढ़िए मोहम्मद। कद अफलह मन ज़क्काहा, तो मस्जिद फलाह की जगह है, ग्रोथ की जगह है, इकोनॉमिकल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, हर तरह के ग्रोथ को देखना है तो मस्जिद में होना चाहिए। ये आयत ये कह रही है, कामयाब हुआ है जिसने अपने नफ्स को पाकीज़ा कर लिया। अब यहाँ पर दो लफ्ज़ हैं, देखिए अच्छी तरह से समझिए कि ये कामयाब कौन है जो नफ्स को कंट्रोल कर रहा है। ये कंट्रोल करने वाली कुव्वत का नाम क्या है, हाउ इट इज़, नफ्स को जो है समझना चाहता हूँ मैं, कंट्रोल करने वाली कुव्वत को समझना चाहता हूँ। नफ्स ममा सवाहा फ़अलहमहा फ़जूरहा वतक्वाहा कद अफलह मन ज़क्काहा वकद ख़ाबा मन दस्साहा कद्दब समूद बितक्वा। इस्लाम मिसाल देता है समूद की, और जिन्होंने बर्बाद कर दिया अपने आप को, अल्लाह के रसूल ने बताया ये नाका है, इसको कोई हाथ ना लगाओ, लेकिन उन्होंने उस नाके को शहीद किया, अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल किया। एक नाके को, या नाका के माने शी केमल, एक शी केमल पर अजाब तकलीफ होने से अल्लाह को पसंद नहीं आया। इसीलिए मौला फरमाते हैं बहुत होशियार रहो जुल्म से, अल्लाह ऊँटनी पर अजाब होने को पसंद नहीं करता, तुम इंसान पर अजाब करो। गजा में यह हो जाए तो अल्लाह छोड़ देने वाला है ना, अल्लाह उन्हीं बंदों में चंद बंदों को उठाएगा जो बता देगा कि जो गुरूर कर रहे हैं उनको भी। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। तो ये कुव्वत है इंसान के अंदर, एक पावर है जो कंट्रोल कर रहा है नफ्स को। तो खुलासा यूं कहिए कि एक किंगडम है, और किंगडम के अंदर जो है हुकूमत चल रही है, किंग जो हुक्म देता है हुकूमत चलती है, अकॉर्डिंग टू दी कमांड ऑफ दी किंग, जिस तरह से किंग हुकूमत करता है वो हुकूमत चल रही है। इंसान की बादशाह जिस्म में उसकी बादशाहत, उसका एक बादशाह है और उसके कुछ आमिल हैं उस बादशाह की बात को सुनते हैं, वो कौन सी कुव्वत है जो बादशाह है, ये बहस है नफ्स से इंसान के समझने के लिए। अगर ये समझ में आ जाए तो इंशाल्लाह मेरी और आपकी कामयाबी, समझ के जाइए अच्छी तरह से। कुरान ये कह रहा है, व नफ्सियम वमा सवाहा फअलहमहा फुजूरहा वतक्वाहा कद अफलह मन ज़क्काहा, कामयाब हुआ है जिसने इसने नफ्स को अपने पाकीज़ा कर लिया। जितना पाकीज़ा करेगा उतना उसमें कुव्वत पैदा हो जाएगी, उतना वो क़ुर्ब इलाही को हासिल कर सकेगा। ये जो कुव्वत है, क्या कुव्वत है, इसके समझने के लिए एक मिसाल दूंगा। एक सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले। इंसान एक कंपाउंड रियलिटी है, इंसान जो है एक मुरक्कब हकीकत है, इंसान एक तनहा चीज़ नहीं है।

दो चीज़ों से बनी हुई चीज़ का नाम है इंसान। इदा नफ़ख तो फ़ी है मिन रूही फ़क़ो लहू साजदीन। अल्लाह ने आदम का पुतला बनाया, बनाने के बाद सजदे का हुक्म नहीं दिया। सजदे का हुक्म देता तो बुतों का सजदा हो जाता, इसलिए कि वहाँ पर पुतला है। इदा नफ़ख तो फ़ी है मिन रूही, जब मैं अपनी रूह इसमें फूंक दूँ तब सजदा है, रूह से पहले सजदा नहीं है। तो पावरफुल क्या चीज़ है इंसान के अंदर? वो मिट्टी से बना हुआ नहीं है, उसके अंदर है ये कुव्वत जो अल्लाह ने इनायत फरमाई है, वो है रूह परवरदिगार। हर इंसान के अंदर रूह परवरदिगार मौजूद है, तो ये रूह को जिसने कमांड की कुव्वत दे दी वो बच गया। अगर जिसने ज़मीनी कुव्वतों को कमांड की कुव्वत दे दी वो तबाह हो गया। मिसाल समझिए अच्छी तरह से, यानी इंसान को अल्लाह ने हर कुव्वत दी है, यह कुव्वत दी है जिसका नाम है रूहानी कुव्वत। और रूहानी कुव्वत क्या है? अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी है आदम को, हम सब के हाथ में। तो रूह है परवरदिगार, ये कुव्वत है। दूसरी कुव्वत है ज़मीनी, ज़मीनी किया है नुतफ़ा मुदगा अलका कथाउन अलज़ाम, ये जो पूरा चेन बढ़ के आगे बढ़ा है। पहले क्या था? स्पर्म था, उसके बाद उनका लोथड़ा बना, 9 मंथ्स गुजरे, अब ये ग्रेजुअल बना बना बना, तबारकल्लाह अहसनुल खालिकीन, अब ये इंसान बना। इंसान जो बना है दो चीज़ों से बना है, एक जिस्म से बना है, एक रूह से बना है। रूह उसका हाकिम है, जिस्म महकूम है। हाकिम के माने किंग जो है रूह है, और बॉडी उसकी उसके किंग की बात को सुनने वाले हैं। आपने सुना है नाम लुकमान, हजरत लुकमान। लुकमान पैगंबर नहीं थे, वॉज नॉट प्रॉफिट। लुकमान को कुरान ने 31st सूरा है कुरान में, 31वें सूरे में खुदा कहता है कि हकीम थे, ही वॉज ए वाइज पर्सन, ही वॉज ए वाइज पर्सन। एक जुमला कहूँ, हर शख्स जिसमें सलाहियत है उसको रिकग्नाइज करना चाहिए। तो कहाँ के रहने वाले थे? अफ्रीका के रहने वाले थे, अफ्रीकन थे, ही वॉज ए वाइज मैन। किसी ने पूछा कि तुम्हारे पास ये विजडम कैसे आई, तुम कैसे होशियार बने? कहा देखो भाई, अल्लाह ने मुझे कुव्वत इदराक दिए, कुव्वत इजरा दिए। कुव्वत इदराक यानी रिसेप्टिव कुव्वत, कुव्वत इजरा यानी एक्टिव कुदरत। इदराक कुव्वत क्या है? देखना, सुनना, बोलना, ये पांचों कुव्वतों को कहते हैं कुव्वत इदराकिया, रिसेप्टिव कुव्वत। इसको मैंने कंट्रोल किया तो अल्लाह ने मुझे हिकमत दी। यानी हर चीज़ को मैंने नहीं देखा, वही देखा जो अल्लाह चाहता है। हर चीज़ को मैं नहीं सुना, वही सुना जो अल्लाह चाहता है। हर चीज़ मैंने नहीं बोली, वही बोला जो अल्लाह चाहता है। हर चीज़ मैंने नहीं खाई, वही खाई जो अल्लाह चाहता है। जैसे ही मैंने रिसेप्टिव सेल्स को मैंने सो कंट्रोल किया, अल्लाह ने मुझे विजडम इनायत की। तो मालूम हुआ रूह पे इंसान जितना पाक करता चला जाता है उसमें उतनी कुव्वत आती चली जाती है कि वो उसका इन्फ्लुएंस दूसरे इंसानों पर होता चला जाता है। इमाम खमेनी ने हमको क्या दिया था? दौलत दी थी, माल दिया, कुछ नहीं दिया। क्यों वहाँ का रहने वाला हम पर असर कर रहा है, मसला क्यों नहीं है? उसने इतना कंट्रोल किया कि अल्लाह ने कहा तुम भी उसके कंट्रोल में आ जाओ। जब उसके कंट्रोल में आ जाओगे तो गोया तुम विलायत के कंट्रोल में आए। जब विलायत के कंट्रोल में आए तो तुम में सलाहियत पैदा होगी। छोटी छोटी विलायतों में आ जाओ तो बड़ी विलायत के अंदर जाने में तुम्हें आसानी होगी। जब विलायत फकीर को समझ जाओ तो विलायत वली तक पहुँचो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। बहुत ही वसी मौजू है, ज़रा समझ के जाइए इंशाल्लाह। उम्मीद है कि मैं आज ये जो मामला मान नफ्स जो कहा है इमाम ने, हमारा और नफ्स के दरमियान राबिता जो है किस तरह से प्योर होना चाहिए। असल में हमारे पास महफिलें मजालिस इन मौजूआत को बिल्कुल मिन्हा कर चुकी हैं। शहीद मुताहरी कहते हैं कि हम लोग जो हैं चंद जो हमारे साथी इमाम खमेनी के दर से अखलाक में जाते थे, शब जुम्मा इतना डीप होता था कि हम लरस जाते थे। उसका असर जुमे को होता था, हफ्ते को होता था, इतवार, पीर के बाद महसूस करते थे वी नीड ए

छोटा सा काफिला है और दुनिया के सामने बता रहा है मैं कुछ नहीं हूँ। इलाही अब्द का बेबाबिक परवरदिगारा तेरा बंदा है, जख्मों से चूर हुसैन जमीन पर आए हैं, सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्ला। रिवायतों मकातिल में है कि जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां जख्म ना हो। सजदे पे गिर गए, खाके करबला पर सजदा हुसैन कर रहा। ऐसे अल्फाज अदा कैसे करें समझ में नहीं आता। शिमर ने इस हालत से बदल दिया। सजदे की हालत से इमाम हुसैन को पलटा। और कैसे कहे तुम के सवार हो गया। मक्तल ने लिखा है, तमाम चीजें रिकॉर्डेड हैं, रिकॉर्डेड हैं, रिकॉर्डेड है। इमाम ने अपने कातिल से पूछा, पहचानते हो मुझे? डू यू नो मी? मैं जानते हो मैं कौन हूँ, मैं जानते हो तुम कौन हो, मैं कौन हूँ जानते हो? क्यों पूछा इमाम हुसैन? कुरान की आयत है, मन कतल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, जो किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे उसका ठिकाना जहन्नम है। तो इमाम बताना चाह रहे थे, तारीख वालों लिखो, मकातिल लिखो। मैंने पूछा, क्या जानते हो तुम? नहीं जानते हो? शिमर ने नहीं कहा नहीं जानता, जानता हूँ आप मोहम्मद मुस्तफा के नवाज। जानता हूँ आप मोहम्मद मुस्तफा के नवासे हो, आप अली के लाडले हो, फातिमा के लखते जिगर हो। उसके बाद इमाम ने एक जुमला कहा, इर्तफाता इर्तफाता, बहुत बुलंद मकाम पे बैठता है। तू जानता है कितना बुलंद मकाम है? उसने कहा, क्या मतलब? कहा, तू नहीं जानता, मेरा नाना मेरे घरवार को खोलता था, सीने से लेकर गले तक बोसे लेता था। ये बोसगा है, नबी है, ये बहुत बुलंद। पास उलमा ने कहा है कि मलकुल मौत भी परेशान हो जाते, मालिक किधर से रूह खींचूं, पैर जख्मी है, हाथ जख्मी है, पेशानी जख्मी है, इसका दिल भी जख्मी है, इसका जिगर भी जख्मी है। आवाज कुदरत आई, हटो या अय्यतुह नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक। अब तुम्हारा काम नहीं है, हमारा काम है, ये अम्र हमारा होगा, ये हमारे पास आ गया। तवज्जो बस रिवायतों में है कि घोड़ा जुलजना अज़लीमा कहता हुआ मक्तल से खयाम गाह की तरफ गया। खयाम गाह में बीबियां इंतजार कर रही थी, घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आई, बीबियां बाहर आई। सकीना ने महार को थामा, ये नहीं पूछा कि बाबा कहाँ है, पूछा बता घोड़े बाबा को पानी दे।

पानी पिलाया गया, ये प्यासा जिवा कर दिया गया। जुलजना देख रहा था, देख रहा था। जैनब समझ गई कुछ कहना चाह रहा है। आगे आगे जुलजना, पीछे पीछे जैनब, जाइए जियारत।

0: में तल्ले ज़ैनबिया क्या है ये तल्ले ज़ैनबिया? तल्ले ज़ैनबिया याने ज़ैनब का टीला। क्या है ज़ैनब का टीला? जहां से बहन ने भाई की बर्बादी की कहानी देखी। शिमर जाले सुनाला सदरे एक मर्तबा दौड़ी हुई गई इब्ने साद, नबी का नवासा कट रहा है, अब भी मौका है बचा ले, अब भी तू चाहे तो बचा सकता है। मैं कहूँ हाजरा सफा व मरवा के दरमियान पानी की तलाश में भागना और है करबला की खाक, भाई को बचाने के लिए छानना और है। ज़ैनब इधर से उधर जाती रही, सिया आंधिया चली, आवाज गूंजी कद कुतल
1: सल्लल्लाहु अलैहि अबा अब्दुल्ला وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليكم من السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار.

0: खुदा जानता है कि मेरी दिली तमन्ना है कि मुख्तार का सर तन से जुदा हो जाए, मगर इसके बावजूद उसके खिलाफ बगैर सोचे समझे तलवार उठाने के खिलाफ हूँ। मुख्तार वो आदमी नहीं है जो बगैर सोचे समझे कोई कदम उठाए। मैं समझता हूँ कि उसकी खामोशी में कोई चाल है।
1: कैसी चाल?
0: यही तो मसला है, पता नहीं, शायद आप लोगों की मालूमात की मदद से उसकी चाल को समझ लूं। जनाब रुफा, आप एक तवील अरसे तक मुख्तार की तन्हाई के साथ ही रहे हैं, यकीनन आप उसकी तदबीरों के रमज़ राज़ से वाकिफ होंगे। मुख्तार अपने तमाम आला अफसरान के अहले खाना को महल बुलवा चुका है ताकि मुखालफिन के मुमकिन शर से महफूज रह सके। इसका मतलब वो ये जानता था कि उसकी हुकूमत को कोई बड़ा खतरा दरपेश है, तो फिर क्यों उसने अपनी तमाम तर मौसर तरीन फौजों को मूसल की जानिब रवाना कर दिया?
2: शेख साहब, इब्राहिम मुख्तार की सिर्फ एक ताही ताकत है जो मूसल गया है। मुख्तार के दाएं बाएं बाजू मुख्तार के साथ हैं ग्याने अजम बिन कामिल अरब।
0: शेम्र, मैंने अपने शक का जवाब जनाब रुफाह से मांगा है, तुमसे नहीं।
2: मुख्तार तुम जैसों के शुबहात पर उम्मीद लगाए बैठा है शेख। वो यकीनन नहीं जानता होगा कि हमारे दरमियान कुछ ऐसे अफराद हैं जो हद से ज्यादा मोहतात और डरपोक हैं।
0: जब तक ये ना जान लूं कि मेरा मद्दे मुकाबिल क्या इरादा रखता है, तलवार नहीं निकालूंगा। आप लोगों के अजब की राह में हायल भी नहीं होगा। लश्कर की पुश्त पर खड़ा रहूंगा और जहां तक हो सके आपकी हिमायत करूंगा।
2: काश हमारे बराबर में खड़े होते शेख। मुख्तार तुम्हें मैदान में देखता तो जल्दी कमर खम कर लेता।
0: नहीं शिम्र, तरजीह दूंगा कि मैं फिलहाल अपनी मस्जिद का पेश इमाम रखूं ना कि मैदान में रखूं।
2: आपने सुना जनाब रुफा, तुम भी यमनियों के पेश इमाम रह सकते हो बजाय इसके कि मैदान में रहो। जो भी जहाद के मालिक गनीमत को पाना चाहता है वो दोबारा बैत कर ले।

0: कहाँ चले ज्ञान?
1: अमीर की इस पहेली से भरपूर खामोशी ने मुझे पागल कर दिया है, वो भी इस पुरखौफ और पुरखतर रात में। काश मुझे पता होता कि अमीर क्या चाहते।
0: तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमने मुख्तार को अभी पहचाना है। तुम सालों से उसके साथ रहे हो, उसकी रग रग से वाकिफ हो ज्ञान।
1: आज रात ये समझा हूँ कि मैं वाकई उसे नहीं पहचानता, ना उसे और ना ही उसकी तदबीरों। काश कयाम के बाद सबस जसों की बेहद को कबूल न करते।
0: तुम दूसरे रुफा बन गए हो ज्ञान, इस्तग़फ़ार करो।
1: तुम जानते हो कि मुझे अबू इसहाक से कितनी मोहब्बत है। तुम जानते हो कि मेरा सर भी काट दिया जाए उसकी बेहद नहीं तोड़ूंगा। मगर इतना तो हक दो कि उसकी तमाम तदबीरों को आंख और कान बंद करके न मानो। हम दोनों अमीर के गैर तो नहीं है। हमें यह क्यों नहीं मालूम कि अमीर इतने सारे मुखालिफिन के साथ क्या करना चाहते हैं? तुमने तमाम तर मुखालिफिन को करीब से देखा है, उनकी तादाद तसव्वुर से मावरा है।
2: मुझे यकीन नहीं आ रहा, मतलब मुख्तार जाल में फंस गया है।
3: कभी कभार जाल में फंसना भी रिहा होने की तदबीर होती है।
2: इसका मतलब है कि तुम हर चीज से बाखबर हो ना?
3: यकीन करो मुझे कुछ ज्यादा नहीं मालूम शीरी, सिर्फ इतना पता है कि नहर को फैलांगने के लिए पहले थोड़ा पीछे हटना होता है, इसके बाद एक बड़ी छलांग लगानी पड़ती है।

0: नारिया नारिया
1: बच्चे तुम लोग आगे मत जाओ, एक तरफ हो जाओ।
2: तुम बच्चों को एक तरफ जमा करो, मुझे अभी देखना होगा कि अब क्या करना है। नारिया नारिया
3: खुदा तुम्हें माफ ना करे मुख्तार, हमें महल में इसलिए ले आया ताकि हमें जिंदा दफन कर दे। हाय खुदाया कितना हसीन नसीब है मेरा, क्या तकदीर है मेरी।
2: पर सुकून रहो नारिया, कुछ भी नहीं हुआ है।
4: ये बातें मुझे ज्यादा तकलीफ देती हैं। कुछ नहीं हुआ, उन्हें आकर हमारे सर काट देने चाहिए ताकि तुम लोगों को यकीन आए। ये ढेरों ढेर लश्कर नहीं देख रही तुम लोग? जो अदावत मैंने उनकी आंखों में देखी है, इस महल में हमें दफनाए बगैर जान नहीं छोड़ने वाली।
2: नारिया हम दोनों को ये जेब नहीं देता कि दुश्मन की एक चीख से डर के बेहोश हो जाए। क्या तुम इन बच्चों से भी छोटी हो जिनके माथे पर बल तक नहीं आया?
4: मैं बुजदिल हूँ, चूहे से बदतर हूँ, मगर तुम लोगों की तरह दुनिया से बेजार नहीं हूँ। अभी मुझे अपनी जान प्यारी है, ठीक है? मुझे इस जहन्नुम में रहकर जलना नहीं है, क्या ये जुर्म है?
2: नारिया मुख्तार की खामोशी एक जाल है, एक जंगी तदबीर है। वो किसी बहाने से अपने छुपे हुए दुश्मनों को मैदान में लाना चाहता है, जो कि उसने कर लिया। जरा हौसले से काम लो, ये सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा।
3: वाह वाह वाह कितना सुहाना ख्वाब है, इन्हीं तसल्लियों में रहो तुम लोग। मुख्तार तुम सबके दिमाग चबा चुका है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। उसके पेट में एक भी सीधी आंत नहीं है, वो हम सबको अपने गुरूर के आगे कुर्बान कर देगा, अभी देखना।
5: उमरा तुम इसे इसलिए होश में लाई हो कि ये फजूल कसम की बकवास करती रहे? उठो अपने आप को देखो, इतनी बड़ी औरत है, शर्म नहीं आती?

0: बच्चों से भी ज्यादा छोटी हो गई है।
1: तुम भी तो बहुत साबरा थी दुम्मा, क्यों तुम्हारा सब्र भी खत्म हो गया? मैं मुंह पर बोलती हूँ इसलिए बुरी हूँ। तुम लोग सब डर चुकी हो मगर अपनी जबान पे लाने से घबराती हो।
2: उसे हक है कि वो डरे, दुश्मन ज्यादा है और दोस्त बहुत कम। मैं नहीं जानती थी कि मुख्तार के इतने सारे मुखालफीन होंगे।
1: ये कूफा है शीरी, कूफा के लोग हामिला औरतों की तरह पल पल तबीयत बदलते हैं। आज रात मुख्तार के खिलाफ हैं और अब ये देखना है कि कल किसके गीत गाते हैं।

कहां छुप रहे हो झूठे? लोमड़ी सिफत लोग जब जाल में फंस जाते हैं तो अपने हाथ पांव मारना और पंजे दिखाना शुरू कर देते हैं। फैसला तलवारों पर छोड़ते हैं ताकि पता चल जाए कौन हक पर है और कौन बातिल पर। जब तक साया आधी लकड़ी तक पहुंच जाए तुम्हारे पास वक्त है कि तस्लीम हो जाओ, वरना मंजनीक से इस महल को तुम लोगों का कब्रिस्तान बना देंगे।

0: झूठ क्यों बोलते हो शिम? हमारे पास मंजनीक तो नहीं है।
1: मैंने झूठ नहीं बोला बिन शहाब। जब तक इस नजरे का साया आधे तक खोजेगा, मंजनीक भी आ जाएगी।
2: अभी तक बाज दोस्तों को तुम्हारी फहम और फरासत पर शक है शिम।
1: बहुत जल्द शक से हैरत को पहुंच जाएंगे।
3: फखर से सर बुलंद कर दिया है तुमने। वाकयान कूफे की बादशाह तो तुम्हें ही सेब देती है। क्या सच में मंजनीक भी है?
1: हौसला रखो बिन हजाज, हौसला रखो।
4: तुम मानते हो इस बात को अब्दुल्ला?
5: किस बात को कियान?
4: तुमने सुना नहीं, मालून मंजनीक की बात कर रहा है।
5: ये शख्स कुछ भी कर सकता है। मुमकिन है उसने मजबूर करके कूफे के कारीगरों से मंजनीक बनवा ली।

0: कुछ तो करो रुफा, आखिर हमें कब तक मुंतजर रहना होगा कि ये लोग जंग का नखारा बजाएं?
1: मसलन क्या करूं?
0: मुझे क्या मालूम, कोई आवाज उठाओ, कुछ तो करो। आखिर कब तक हमारी दौड़ जिजोशन के बेटे के हाथों में रहेगी?
1: क्या कह सकता हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको जंग के बारे में और कुछ नहीं आता सिवाय तलवार घुमाने के। पता नहीं जिजोशन का बेटा आखिर कौन सी निजात खाता है, ये कैसी से पे साल आ रही है।

0: Shabashim, shabash. Shabash.
1: मैंने तो मुख्तार की फातिहा पढ़ी। आज के बाद मुझे अपना सच्चा जान निसार जान लो। लानत है मुझ पर अगर मैं अपनी जान निछावर करने में मुजायका करूं।
2: बिन हज्जाज, ये जिन की औलाद जो तुम देख रहे हो बहुत महंगा पड़ा है हमें। तुम्हारी जान निसारी की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कुछ पैसे दो तब तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन करूंगा।
1: कितना नजराना देना पड़ेगा मुझे?
2: 50 ऊंटों की कीमत अदा कर दो।
1: 50 ऊंट?
3: एक रात में तो ये जिन नहीं बन सकता। मुझे यकीन है कि ये लोग मुद्दतों पहले से इस काम में मगन होंगे। तुम और तुम्हारे जासूस कैसे ये बात नहीं समझ सके क्या?
4: ठीक है, नहीं समझ पाए। अब आप क्या चाहते हैं?
5: क्या अपने आप को फांसी दे दूं?
1: भाइयों, ये कौन सा बहस मुबाहिसे का वक्त है?
5: इस्माइल तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मैंने जानबूझकर अपनी जिम्मेदारियों में कोताही की है।
3: तुम गलत मत समझना कियान, लेकिन सोचो क्या इस बला को एक रात में बनाया जा सकता है?
4: मेरे ख्याल में ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है।
6: क्यों नहीं कियान? हो सकता।

0: सकता है। सोने के मुआवजे से रातों रात पहाड़ को इधर से उधर किया जा सकता है। जान जाओ, कले के बुर्ज खाली करा दो।
1: पत्थरों में से हर एक कम से कम 10 मन का होगा।
2: ये पत्थर नहीं है, जलजला आवर बना है।
1: हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे।
3: मंजरी के बारे में कोई सोच विचार नहीं करेंगे?
4: तुम्हें कोई तदबीर सूझी है क्या?
3: एक तदबीर है, हम बारीक धागों से मोटी रस्सियां बनाकर उन्हें पतली पतली बारीक लकड़ियों पर बांध सकते हैं और उन्हें पत्थरों के लिए सिदरा बना दें। रस्सियां इन जरबात की शिद्दत को कम कर देंगी।
4: अगर इतना वक्त हो तो बहुत अच्छी तदबीर।
3: वक्त है हमारे पास ज्ञान। अरब हंगामाराई करने वाले इस महल को आबाद देखना चाहते हैं। जितना हो सके सबर करेंगे ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके।
5: कादसिया के वाके के वारिसों, ए कसरा के

0: भाग गए।
1: मालूम था कि भाग जाएंगी। आग लगाई इसलिए थी कि भाग सके।
0: सारा कसूर मेरा था, मुझे आग की परवाह नहीं करनी चाहिए।
1: मगर हमने तो परवाह नहीं की थी, फिर हमें क्या मिला?
0: मेरी तरतीद और ताल्लुक उनके भागने का सबब बनी।
1: तुम तो लगता है आज अपने आप को जख्मी कर लोगे इस गम में। अरे भाग गए तो क्या हुआ, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे।
2: अब क्या हुआ उमरा?
3: तमाम मुखालफिन भाग चुके हैं, कूफा कयाम की फौजों के तसल्लुत में है।
2: खुदा का शुक्र है, मुझे पता था कि खुदा की मेरे बेटे मुख्तार पर खास इनायतें हैं। तुमने सुना नारिया, क्या तुम अब भी मुख्तार और उसकी तदबीरों पर शक करोगी?

0: से लड़ाकर क्या मिला? खुदा की लानत हो तुम पर शिव कि तुमने हमें खाक नशीन बना दिया।
1: मुंह बंद रखो सब, किसी के बकवास ना सुनूं मैं। खामोश चलो चलो।

लानत है मुझ मेरे ऊपर, कोई नहीं जो मुझ चाइल को टोक देता के कीचड़ के बच्चे। तुम शेर की तुमसे क्यों खेल रहे हो? हमें मुख्तार

0: अमीर, अमीर, आपसे कुछ अर्ज करना है। अमीर,
1: हम सुन रहे हैं दिलावर।
0: मेरा नाम दरहम है, कबीले बनी नहद से हूँ। हम आपकी फिदाई हैं अमीर। क्या फर्क पड़ता है कि अगर आपके कुछ अरब साथी हमारी तहकीर करें? हमें यकीन है कि अमीर मुख्तार अपनी फौज के तमाम तर सिपाहियों को एक नजर से देखते हैं, चाहे वो अरब हों चाहे अजम। आपके अरब साथियों में कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो क्याम की मुकद्दस अहदाफ से खयानत कर रहे हैं।
1: सजाए खयानत कार शरई हुदूद हैं दिरहम, बशर्ते ये कि उनकी खयानत साबित हो जाए। क्या हुआ है?
0: मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इब्ने शेरी के नहदी ने चंद मुखालिफिन के असीरों को आज़ाद कर दिया, क्योंकि वह सब उसके कबीले और ख़ानदान के थे। मैं उन रिहा होने वालों को बखूबी जानता हूँ, वो सब के सब करबला के मुजरमीन में से थे। मैंने उनकी रोकथाम करना चाही तो इब्ने शरीक ने अपने हाथ से मेरे सीने पर मुक्का मारते हुए चिल्ला कर कहा, तुमसे क्या ताल्लुक है अजम गुलाम कहीं के?
1: उसने बहुत बुरा किया दिरहम। तमाम तरकैदियों को, चाहे वो मुख्तार के कबीले और खानदान के ही क्यों ना हो, जिंदान में डाला जाएगा यहाँ तक कि अदालत उनका फैसला करे। साहिब
2: जी। अमीर,
1: फिलफोर अपने आप को बिन शरीक तक पहुंचाओ और कहो कि जब तक वो तमाम आजाद किए हुए असीरों को कैद करके हमारे हवाले ना कर दे, हमारे सामने ना आए।
2: जी अमीर। आओ दिरहम।
3: मुख्तार, ए हाथियों को उठाने वाले सरदार के बेटे, हमने हंगामा आराई की और कमजोर लोगों को हकीर शुमार किया। हमारी ये हंगामा आराई सिवाय गरूर और खता के और कुछ न थी। हमने अपने हरीफ को जलील और हकीर जाना, खुदा के वादे से गाफिल हो गए। ये भूल गए थे कि खुदा ने कमजोरों को जमीन का वारिस करार दिया है। अब हम अपनी जहालत का इकरार करते हैं और जो मौजज़ा हमने देखा उसे कबूल करते हैं। मैंने दौरान जंग कुछ फरिश्तों को देखा जो पर वाले घोड़ों पर सवार थे और नंगी तलवारें लिए मुख्तार के दुश्मनों पर हमलावर हुए और उन्हें भगा दिया। तो फिर ए जीत जाने वाले कैदी के साथ नरमी बरतो, खुदा रहम पर नरमी बरतो और हमारी तौबा कबूल कर लो। मैं तुम्हारा नौकर हूँ, अगर इस गलती को माफ कर दो।
1: नाम क्या है तुम्हारा शायर?
3: हकीर तरीन शख्स सराकत इब्ने मुरादी से बार की हूँ।
1: झूठ निहायत दलेराना और शायराना था, मुझे याद रहेगा।
4: माफ कीजिएगा अमीर, इस कतार का मैं क्या करूं?
1: जिंदानबान तुम हो, तुम जानो।
4: बज़ाहिर इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, इन सबको रखने के लिए काफी बड़ी जगह दरकार है। मैं असीरों की इस फौज को जिंदान के किस गोशे में ठहराऊं?
1: ये आपका मसला है जनाब जिंदानबान।
4: आपका मसला भी है अमीर, कल से ये सब हुकूमत के लिए बहुत बड़ा बवाल बन जाएंगे। इनकी खिलाई पिलाई और हिफाजत के खर्चे आसमान से बातें करने लगेंगे।
1: परेशान मत हो ज़ायदा, ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अनकरीब हर उस शख्स को, चाहे वो किसी भी वजह से वाकई करबला में शरीक था, उसका किसास किया जाएगा। बाकी अफराद भी वादे वईद के साथ आजाद कर दिए जाएंगे।
5: एक मसला है अमीर।
1: आप तो खुद अल्लामा दहर हैं अब्दुल रहमान, मुझे डर है कि आपके मसले का हल न दे पाया तो।

0: मुख्तार, आपने साबित कर दिया है कि बगैर सोचे समझे बात नहीं करते और बगैर हिकमत के कोई काम नहीं करते। कम से कम मैं तो पहले से ज्यादा कायल हो गया हूं। आपने करबला के वाकये के बाद मौसर किरदारों को मक्तूब अमान नामा दिया है। उस अमान नामे की वजह से वो महफूज है। जैसे कि उमर साहब, उसके साथ आप क्या करेंगे जिसने आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं की और आपकी बैत भी नहीं तोड़ी।
1: ज्यादा वक्त नहीं गुजरेगा अब्दुल रहमान, और उमर साहब शर्त को जो अमान नामे में लिखी गई है तोड़ देगा।

अगर ये याद आपको रह जाए, इस पे अगर अमल हो जाए तो अशरा कामयाब। अरे अशरा कामयाब करना कोई नीयत या कोई मकसद नहीं, आया हूं आप भी आए हैं किसके लिए कि कुछ लेके यहां से जाए और मैं कुछ आपको दे पाऊं। ये 5 मिनट की बात अभी जो करने वाला हूं आज के मौजू के सिलसिले में, अगर ये हो जाए ना तो कामयाब इंशाअल्लाह जिंदगी। ये जो अल्लाह का भूल जाने वाला मसला है ना वो हमसे हट जाएगा। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम या अली, के पास एक शख्स आया, तूलानी हदीस है, तो मौला मैंने बहुत सुना है मुहासिबत नफ्स के बारे में, कैसे करना चाहिए मुहासिबत नफ्स, बहुत सी बातें मौला ने की है, मुझे जोर देना एक ही बात पर। का बंदा जब सुबह को उठे अपने आप से पूछे आज या कल कौन सा नेकी का काम किया, अपने आप से पूछे आज या कल कौन सी बुराई का काम किया, क्या आज किसी बीमार की इबादत के लिए मैं गया, आज क्या मैंने किसी की मदद की, आज किसी यतीम को मैं काम आया, आज किसी बेवा को मैं काम आया, आज किसी फकीर को मैं काम आया, ऐसे पूरी लिस्ट बयान कर करके एक मोड़ वो आया कि जहां पर मौलाए कायनात ने कहा कि मुहासिबत नफ्स का तरीका जो तू मुझे पूछ रहा है उसमें ये भी है कि अपने आप से पूछ क्या आज किसी की गीबत हुई है, क्या आज किसी की मुझसे गीबत हुई है, इंसाफ से बताइए। अगर ये छोटा सा काम, किसी की बुराई ऐब जोई, किसी की गीबत, अगर आज इंशाअल्लाह आप तो नहीं करते होंगे लेकिन करो भी तो बहुत अच्छा है, मैं आपको इजाजत देता हूं, अगर आपको मेरी गीबत करना है तो मैं आपको खुला रास्ता देता हूं, बहुत कीजिए, क्यों, जितना आप मेरी गीबत करोगे उतने मेरे गुनाह साफ होंगे। अब फर्ज करें भाई कि आज तुम में से किसी ने मेरी गीबत की, मेरी बात कर रहा हूं, फिर कल वो उठे और मौला का फरमान कोकी है, कोकी, ओ मौला ने कहा था किसी की गीबत की, हाँ मौलाना की थोड़ी बात हो गई है, खुदाया माफ करना, अगले दिन वापस उसी मौलाना की गीबत। आपको याद है मैं गोश्त का मसला हमेशा पूछता हूं, आपको याद नहीं, दुनिया में सबसे सस्ता गोश्त, सादा गोश्त, लजीज गोश्त, मुफ्त मिलने वाला गोश्त, हर मार्केट में मिलने वाला गोश्त, वो कौन सा होता है, कौन सा होता है कारी साहब, ऊंट का, भैंस का, गाय का, किसका है, क्या मुर्गी का, मैं आपको मार्केट का एड्रेस देता हूं, वो गोश्त कहां मिलता है, सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया, सबसे लजीज, सबसे मुफ्त, कभी उसकी कमी होती नहीं, शॉर्टेज होती नहीं मार्केट में, वो है मौलाना हजरात का गोश्त। यूं पढ़ा, ऐसे पढ़ा, ये कहा, वो कहा, अपने आप को क्या समझता है, वो हुआ, यूं हुआ, कहां से लेके ऐसे को आए, क्यों, मौलाना की गीबत करना वो सबसे सस्ता, मोमिन का गोश्त खाना वो भी गीबत, लेकिन वो सबसे सस्ता नहीं। अब मैं पेरिस में रहता हूं कारी साहब, आपको कितना मैं याद करूंगा, बहुत कम, लेकिन मैं मिंबर पे हूं ना, बहुत से लोग मुझे देखते हैं तो मैं याद रहता हूं कि ये वो मौलाना है, इन्होंने ये कहा था, वो कहा था, ऐसे बोला था, ऐसे बैठते थे, ऐसे चीख मारते थे, ऐसे जोक लगाते थे, ऐसे सलवात पढ़ता पढ़ावाते थे, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर,

मौला ने कहा अपने आप से हर रोज पूछ, हर रोज, क्या आज मुझसे किसी की गीबत हुई है या नहीं। मैंने कहा ना, अगर ये सवाल मेरे जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो माशरे में कितना अमन अमान आ सकता है, घरों में, फैमिलियों में, पूरी जमात में, पूरी दुनिया में कितना अमन अमान आ सकता है। लेकिन ये होगा कब, जब मुहासबत नफ्स मैं करूंगा कि कम से कम हर रोज अपने आप से पूछूं कि आज मैंने क्या किया जिसके लिए खुदा का शुक्र करूं, आज मुझसे क्या हो गया जिसके लिए मैं खुदा की बारगाह में माफी तलब करूं। नहीं, वही रूटीन है, वही रूटीन है। किसी को यह अंदाजा है ही नहीं कि मुझे कल अल्लाह की बारगाह में जवाब देने का है। इसलिए जब बंदा मुहासबत नफ्स करता है तो इसका मतलब यह होता है कि उनसे खुदावंद करीम कभी भुलाया नहीं गया, क्योंकि उसको याद रहता है कि मुझे अल्लाह की बारगाह में जाने का है। और इसीलिए खुदा ने कहा कि उन जैसे मत बनो जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। क्यों? जब बंदा कल की कोई फिक्र नहीं करता, इसका मतलब यह है कि उसे खुदा की कोई परवाह नहीं, वो खुदा को भुला चुका है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन क्या करें, हमें ऐसी ऐसी बातें समझाई गई है, हम आदी हो चुके हैं, जिम्मेदारियां हमसे हटा ली गई, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। अरे हर रात, हर रात नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि मलिकन यंज़िलु मिनस समाई फिकुल्ली लैला फयुनादी। बेशक अल्लाह सुबहानहु व तआला का एक ऐसा फरिश्ता है, एक ऐसा फरिश्ता है कि जो हर रात इस दुनिया में नाजिल होता है और निदा देता है। डॉक्टर घबराणी, आपने कभी फरिश्ते को देखा है? क्यों, मैं नहीं दिखता? नहीं दिखता, मैं नहीं दिखता, ये फरिश्ता नहीं दिखता ना। लेकिन ये नबी करीम रहमतुलिल आलमीन थे, वो फरिश्ते को देखते थे और जानते थे। उन्होंने हमें बताया, इतनी मोहब्बत नबी करीम को हमसे है ताकि हम बेदार हो जाए, वेक अप, जारती जाएगा त्यारती सवार। हमने और आपने, किसी ने किसी फरिश्ते को नहीं देखा, लेकिन नबी ने कहा हर रात अल्लाह सुबहान व तआला का एक फरिश्ता दुनिया में नाजिल होता है और हर रात ये ऐलान करता है। क्या? या अपना अशरीन जिद्दो वज्तहिदो, ए 20 साल के लोगों, तू कितने साल का है? 22, तू आ गए इसके अंदर। तू कितने का है बेटा? 14, अभी छोटा है नौजवान। तू कितना है? 40, अभी मार खाएगा देखना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद, या अपना नशरीन, ए 20 साल के हजरात, जिद्दू वज्तहिदू, हर रात खुदा का वो मुनादी कहता है, ए 20 साल के लोगों, जिद्दू, मेहनत करो, कोशिश करो। ये उरूज का जमाना है, 20 साल के लोगों मेहनत करो, कोशिश करो, उसके बाद क्या आएगा? या अपना 30, 30 साल के लोगों, कौन है 30 साल का यहां? तू कितने का है भाई? 18, तू वो पहले में आ गया। 30 साल का कौन है यहां? कोई दिखता ही नहीं। 30 साल का कोई नहीं मजमे में कोई। आप 30 साल के अंदर अंदर हो, सुनिएगा, खुदा का फरिश्ता हर रात आपसे कर रहा है बात। या अपना 30, 30 साल के लोगों, ला तगुर्रन्नकुमुल हयातिद्दुनिया, हयातिद्दुनिया, 30 साल के लोग।

0: वो खबरदार रहना, इस दुनिया के धोखे में मत आना। इस दुनिया की जिंदगी ला तगुर्रन्नकुम हयाती दुनिया, इस दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखा न दे दे। 20 साल वालों को कहा मेहनत करो, कोशिश करो। 30 साल वालों लोगों को कहा, 30 साल वाले, दुनिया इस जिंदगी से धोखा मत खाना। नौजवान तेरी बारी अब, या अबनाल अरबईन मादा अदद तुम लिलिकाए रब्बिकुम, ए 40 साल के लोगों, तुमने अपनी परवरदिगार की मुलाकात के लिए क्या तैयारी की है? आपकी भी बारी आएगी, सबकी बारी आएगी। कुछ लोग खुश हो गए कि चलो ये 40 में खत्म हो गया, 40वां खत्म हो गया तो 40 खत्म नहीं, बहुत आगे बात जाएगी। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, वापस दोहरा, अल्लाहु अकबर,
1: नारे रिसालत, नारे हैदरी।
0: वापस दोहरा देता हूं, ए 20 साल के लोगों खूब मेहनत और कोशिश करो, ए 30 साल के लोगों जिंदगी है दुनिया तुम्हें धोखा ना दे दे, ए 40 साल के लोगों ऐसा ना हो। पूछ लो अपने आप से, मादा अदद तुम ले लो रब्बिकुम, अपने परवरदिगार की मुलाकात के लिए तुमने तैयार क्या किया है? या अबनाल खमसीन, खमसीन सबको जाना उमरा में ज्यारतों में जाते, खमसीन सबको पता है। ए 50 के लोगों, अताकुम नजीर, नजारत करने वाला आ गया है, दरवाजा खटखटाने वाला आ गया है। हमारी जबान में गुजराती में अर्धो पग हवे कबर मा छे, अर्धो पग। या अबनाल खमसीन अताकुम नजीर, नजारत करने वाला गुजराती में क्या कहेंगे, चेतवनी देवा वारो आवी गयो छे, चेतवनी देवा वारो आवी गयो छे, अताकुम नजीर। और आगे या अबना सित्तीन, ए 60 साल के लोगों, 60 साल की बात आई तो सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम, क्या करूं इस हदीस को पढूं, ऐसा ना हो कल मुझे उतार दे नीचे मिंबर से, क्या करूं, मौला का फरमान है लेकिन मुश्किल है ना। वैसे कोकी तो है, इमाम को मानते लेकिन इमाम की मानना नहीं, इसलिए पढ़ ही देता हूं। छठे में मन क्या, इदा बलगता सित्तीन सना फहसब नफसक फिल मौता, ए मुसलमान अगर तेरी उम्र 60 साल की हो गई है तो तू अपने आप को मुर्दों में समझ। फंस गए नाथानी साहब, आपको शायद सवाल होता होगा, मौलाना आप कितने साल के हो? नौजवान, जहां भी जाता हो लोग मुझे कहते हैं आप 70 साल के होंगे, 70। कहीं कहीं गया तो इतना बुढ़ा लगता हूं, किसी ने कह दिया 80 के होंगे। आप कितने देते हो कारी साहब, कितने का लगता हूं, कितने साल का लगता हूं? हाँ 70 का लगता हूं ना, 55 का हूं। सल्लु अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, छठे इमाम ने कहा इदा बल्लगता सित्तीन सना फहसब नफ्सक फिल मौता, ए मुसलमान अगर खुदा ने तुझे 60 साल की उम्र बख्श दी है तो अब तू अपने आप को मुर्दों में समझ। और वहां पर वो फरिश्ता कह रहा है या अपना सित्तीन, ए 60 साल के लोगों, जरो आना हिसादो, ए मुसलमानों अगर तुम्हारी उम्र 60 साल की है अब फसल को काटने का जमाना आ गया, जितना उगाया था ना बस वो अब कुछ नया नहीं उग पाएगा, अब जमीन बंजर हो गई, अब बात खत्म। 60 साल के बाद कुछ बेहतरीन जिरात अनाज नहीं आएगा, टेढ़ा मेढ़ा उगेगा।

मैं रो रहा हूं इसलिए कि मुनकर नकीर जब मुझे सवाल करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। और मुझे कहा गया तुझे कुछ नहीं पूछा जाएगा। या चौथे इमाम जारो कतार रो रहे हैं कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि मुनकर नकीर आके मुझे सवाल करेंगे। पांच, छठी मर्तबा, अब की ले खुरूज मिन कब्री, मैं ना रो उस वक्त को मैं याद करता हूं कि जब मुझे कब्र से निकाला जाएगा। उस दिन हर कोई अपनी अपने नफ्सों के पीछे होगा, मैं मैदान में रहूंगा। चौथे इमाम कह रहे हैं शान उन फिशान, हर कोई अपनी अपनी हालत में होगा, कयामत के दिन के लिए मैं ना रहूं। ऐ मुसलमान बेदार हो जा, वेक अप, जार थी जाएगा त्यार थी सवार, अपना हिसाब व किताब अभी से शुरू कर दे। हर रोज की बात सातवें इमाम ने की है, हर रोज। करबला क्या हमारे पास नहीं, दरसगाह नहीं? एक आदमी ने करबला में वहां से बते नफ्स किया था, इसलिए वो लानतुल्लाह से सलामुल्लाह बन गया, अलैहि सलाम बन गया। कौन? हुर। पता है ना आपको, शबे आशूर की रात है, खतीब कबीर आदम आपके जानिब खुदा उसको गरी के रहमत करे और तमाम मरहुमीन को, मौलाना मिर्जा अथहर साहब, इसको तो आप जानते हो, इसी से मिंबर से कितनी बार खिताब किया होगा उन्होंने, वो भी पढ़ा करते थे। मुहाजिर इब्ने औस कहता है जनाब हुर को, ए हुर, अगर कोई आके मुझे पूछे कि पिसर साद के लश्कर में सबसे बहादुर कौन है, तो हुर मैं तेरा नाम लेता। ए हुर आज इतना इज़्तिराब क्यों है? क्या तलवार से डर गया है? हुर ने जवाब दिया था, सिपाही मौत से नहीं डरता, मौत के साये में रहता है। तो कहा फिर हुर क्या है? हुर ने क्या जवाब दिया था? मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के बीच में पा रहा हूं। कैसे हुर के अंदर ये आया? वहां से बते नफ्स कि कल जाके मैं अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा। ये बातें हो रही थी, मरहूम कहा करते थे कि उसी असना में जनाब हुर का फर्जंद आया बुकीर। बाप की हालत देखकर पूछा, कहा बाबा जान मुझे आपके साथ आना है, लेकिन आपकी हालत ये क्यों है? हुर ने कहा बेटा जानना चाहते हो क्यों है? थोड़ी देर के लिए खैमा हुसैनी तरफ जा और उसके बाद वापस आ, फिर मैं तुझे बताता हूं कि मुझे हुसैन की तरफ क्यों जाना है। बेटा गया, वापस आया, कहा बाबा कुछ खास नहीं लगा, कहा जोर कान लगा कर सुन। अरे थोड़ी देर न हुई थी कि फर्जंद बुकीर आया रोता हुआ, कहा बाबा मैं भी आपके साथ आता हूं। कहा बेटा क्या हुआ? कहा जैसे जैसे खैमाए हुसैन के नजदीक गया, मैंने सुना हुसैन के छोटे छोटे बच्चे की आवाज बुलंद करते, बाबा मैं भी आपके साथ आऊंगा। अजादारो रोजे आशूर नबुदार हुआ। अरबाब मिंबर से आप सुनते हैं कि हुर जब बाहर निकला तो उन्होंने क्या देखा कि एक सिपाही पानी को लेकर किसी एक जानवर घोड़े की टापों में पानी डाल रहा है। हुर ने देखा, कहा बदबख्त क्या कर रहा है? कहा और क्या करूं, सूरज की गर्मी इतनी है कि जानवरों के पैर जख्मी हो गए। हुर ने कहा तुझे जानवरों के पैर की परी है? अरे वाह हुसैन के बच्चे, अल्लाह की आवाज। बस आजादार हुर निकले, ये हुर लानतुल्लाह अलैह था लेकिन आज रहमतुल्लाह अलैह हो गया, अलैहि सलाम हो गया। क्यों? एक लहजे के लिए कल की तैयारी कर ली कि कल जाके मैं खुदा को क्या जवाब

मौला क्या मेरे लिए तौबा है? हुसैन ने सीने से लगाया, कहा और मैंने तुझे माफ़ किया, मेरे खुदा ने तुझे माफ़ किया। लेकिन इस असना में मरहूम मिर्ज़ा अतहर पढ़ा करते थे कि जब दोनों सीने मिले हुसैन के और हुर के, हुर ने महसूस किया कि हुसैन की आंखों से आंसू जारी है। हुर ने कहा माँ, बोला आप क्यों रो रहे हो? अरे रोना तो मुझे चाहिए था। हुसैन ने कहा हुर, मुझे वो वक्त याद आ गया जब तू दुश्मन होके आया था, मैंने तुझे पानी पिलाया था। अरे आज हुसैन मजबूर है, अपने मेहमान को पानी नहीं पिला सकता। हाजादारो, और अपने फर्जंद के साथ आया था ना, जब रोजे आशूर आए हैं एक मरतबा, और ने कहा मौला मेरी खता है, मैं इन सब का सबब हूँ, जुर्माना अदा करना चाहता हूँ, मेरे फर्जंद को मक्तल में जाने की इजाज़त दो। आजादारो, फर्जंद हुर मैदान में गया, एक वक्त आया फर्जंद ने बाबा को पुकारा, हुसैन भी गए और भी गए, लेकिन क्या देखा? और जब फर्जंद के लाशे पे आया क्या देखा? मौला पहले से वहां थे और खड़े हुए, और क्या किया? अपने आस्तीनों को बुलंद करना शुरू किया, हुसैन की नजर पड़ी। हुसैन ने पूछा और क्या इरादा है? कहा मौला जवान का लाश आया ना उठा। हुसैन ने कहा और क्या कोई ज़ईफ बाप अपने नौजवान का लाशा? मैं कहूँगा मौला असरे आशूर आने दो, आप ही होंगे, कमर झुकाए हुए मैदान में जाओगे। अकबर का अला लअनतुल्लाह अल कौम ज़ालिमीन وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ مَاتَمَ حُسَيْنُ

We see the signs of Allah subhanahu wa ta'ala, and those signs lead us to Allah subhanahu wa ta'ala. We see the signs, the ayat of Allah subhanahu wa ta'ala. We see the sun, the moon, the stars, and all of these things, that there are two types of signs of Allah subhanahu wa ta'ala. One which are in the horizon, and one which are in the nafs, in our own selves, in the human beings. You know, in Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, that when you look at the signs, fil afaq wa fi anfusihim. So there are two types of signs of Allah: fil afaq, horizon, afaqi nishaniya, or anfusi nishaniya. So there are two types of signs of Allah subhanahu wa ta'ala. So when we say ashhadu, I bear witness, annahu waliyuk, that He is your wali, or in many ziyarat, ushhadu Allah wa malaikatahu wa anbiya'ahu wa rusula, anni bikum mu'min wa bi'iyabikum mu'qin. I take Allah as my witness and His angels and the prophets and the apostles that you, I believe in you, and you will surely return to this world. In Ziyarat Varsa, you read this, that Imam will return to this world. What does this mean? Jab hum kehte hain ki hum gawahi dete hain, mujhe thoda sa aaj isko pesh karna hai. Aaya hum keh sakte hain ki hum gawahi dete hain? कई मर्तबा हम नहीं कह सकते, कई मर्तबा हमें कहना पड़ता है. हत्ता टू बिकम अ मुस्लिम यू हैव टू से अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह व अशहदु अन्न अलियन वलीउल्लाह व औलादुल मासूना फॉर एग्जांपल हुज्जतुल्लाह. ऑल ऑफ दीस थिंग्स लीड, यू नो, हैव वी सीन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हैव वी सीन रिसालत, हैव वी सीन नबुव्वत. अगर जवादी आमली हैज गॉन अ लॉट डीप इन टू ऑल ऑफ दीज विटनेसेस, प्लीज एवरी वन पे अटेंशन. मैंने थोड़ा सा ये टेक्निकल मौजू छेड़ दिया, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको निभाऊंगा. अगर ये थोड़ी सी फलसफे कलाम की बहस ले आऊँ तो तवज्जो कर लीजिएगा, मैं उसको कोशिश करूँगा बहुत आसान बनाने की. एवरी वन, वेन यू गो टू द हरम्स ऑफ आइमा अलैहिस्सलाम, फॉर एग्जाम्पल मशहद मुकद्दस, यू स्टैंड ऑन द डोर एंड यू टेक परमिशन एंड यू से अशहदु अन्नक तस्मा कलामी व तरुद्दु सलामी. I bear witness that you listen to my words and you return my salam. Really? Can I say this? Because we don't witness that the Imam returns our salam. He listens. So who is it saying this? It is the Imam himself saying about the other Imam that he can see you, he can hear you, he returns your salam. ये कौन फरमा रहा है, कौन हमें समझा रहा है, कौन बता रहा है? ये खुद इमाम ने बताया है कि इमाम हमारा सलाम सुनते हैं, जवाब देते हैं. और इमाम रजा कि आप इज़्ने दुखूल में पढ़ते हैं, यू नो, व्हेन यू वांट टू एंटर इज़्ने दुखूल. व्हाट इज इज़्ने दुखूल? यू टेक परमिशन, यू सीक परमिशन टू एंटर द हरम. यू नेवर सीक द परमिशन फ्रॉम अ डेड पर्सन. यू ऑलवेज सीक परमिशन फ्रॉम द पीपल हु आर अलाइव. So you bear witness that they are alive and you say, Mawla, do I have the permission to enter your haram? And you many times, you know, read in the ziyarat of Imam Amir al-Mumineen and Mawla Hussain that first I ask Allah subhanahu wa ta'ala because you are His wali. Oh Allah, give me the permission to enter the haram. Oh Rasulullah, give me the permission to enter the haram. Oh Malaika, oh Mawla, you ask each one of them to enter the haram. So you only ask permission from the people who are alive. Insan zindon se ijazat mangta hai, murdon se nahi. So you enter the haram. You say all of those words. Ab yahan pe main bahut si aur misale leke aa sakta hu ki is pe agar tawajjuh kar lenge ki hum aksar jagah pe jaake kehte hain main gawahi deta hu ki aap mujhe dekh rahe hain. Tashhadu maqami wa taruddu salami, that you are seeing my position, you know who I am. This is a big sentence when you say to the Imam that I know you know who I am. In many ziyarat it says that Imam Hussain al-Islam knows each one of his zayirin by his name and by his ancestry. Imam har zayir ko uske naam se hasab nasab se pehchante hain. What does this mean? Main thoda sa iske tafseel mein jaunga to bahut maazrat. So it is very important that we understand when we say to the Imam, we don't understand. Hum nahi samajhte ki hum kya keh rahe hain. Bahut maazrat. Yahan bade bade jayyid ulama maujood hain. Hum ye sirf ada kar rahe hain alfaz. Hum inhe samajhte nahi hain. Ye wo samajh ke keh rahe the jinhe Jafar us-Sadiq kaha jata. ये इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं कि ऐसे ज़ियारत पढ़ो. गवाही वो दे सकते हैं, हम सिर्फ जुमले दोहरा रहे हैं. We're only repeating those words.

हम कह क्या रहे हैं इमाम से कि आप हमें देख रहे हैं. एवरीवन, देयर आर मेनी रिवायत दैट से दैट इफ यू बिलीव दैट दे आर डेड योर ज़ियारत इज नॉट इवन एक्सेप्टेड. जो हमें मुर्दा समझ के हमारी ज़ियारत करे उसकी ज़ियारत कबूल ही नहीं है. मुर्दे की ज़ियारत में जिंदा की ज़ियारत में फर्क क्या है, यू नो. Our Muslim brothers have made this whole concept of sahabi, that a person who visits the Holy Prophet, recites a kalima and sees the Holy Prophet becomes a sahabi, becomes radiyallahu anhu. While the Holy Prophet himself says, man zarani ba'da mamati ka man zarani fi hayati. Jisne

कहा मैंने तौबा कर लिया, आइंदा तो नहीं आऊँगा। तो कहने लगे, मैंने जाके उनसे कहा कि भाई कोई इनका बेटा कोई वकील मिले, कहा ये इतनी लंबी नमाज। अब वो तकरीबन 100 बरस के थे, मर्जा तकलीद, वो 100 बरस के थे। तो कहने लगे, आका सबसे कमज़ोर आदमी को देख के नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो कहा मुझसे ज़्यादा कमज़ोर कौन होगा, कमर झुकी हुई है, टांगे कांप रही हैं, घुटने कमज़ोर हैं, जब मैं पढ़ रहा हूँ तो तुम भी पढ़ो। मैंने नाम नहीं लिया है मर्जा का, ताकि तौहीन ऐज़ाने गिरामी कहा कि भाई दूसरे मर्जा की मगरिबी शायद दोनों ख़त्म हो गई, आपकी मगरिबी चल रही है। ऐज़ाने गिरामी बाज़ात बहुत तवील नमाज, कहा कि नहीं ये सिर्फ तलबा के लिए फैज़िया में पढ़ाता हूँ, हरम में नहीं पढ़ा रहा। हरम में सब लोग आते हैं, मैं यहाँ तो मरहूम काशी बहुत लंबा वजू, और पता नहीं ये मुझे बातें छेड़नी चाहिए थी, पता नहीं क्यों मैंने छेड़ दी हैं, मुझे खुद डर लग रहा है कि मैं कन्फ्यूज़ ना करूँ। मरहूम काशी बहुत बड़े ईरान के आलिम थे, बैठे थे वजू कर रहे हैं सहन में, अब ईरान में गर्मियों में वजू कर रहे हैं, इतने में देखा बाजार में उनका वो मस्जिद थी, मदरसा था, बाजार से एक लड़का आया। अब वो ईरान है, सभी शिया, लड़का अंदर आया, उसने जल्दी से वजू किया, नमाज़ पढ़ी, आगा का भी वजू ख़त्म नहीं हुआ, उसकी बेचारे जोहर असर हुई, जाने लगा। उन्होंने रोके, कहेंगे इधर आओ, बच्चा तेज सा बहुत। कहने लगे क्या कर रहे थे, कहने कुछ नहीं। तवज्जो, मरहूम काशी ने सवाल किया, क्या मतलब कुछ नहीं, मैंने भी तुम्हें अपनी आंखों से देखा है, तुमने वजू किया, अंदर गए, क्या कर रहे थे, कहने कुछ नहीं। उसको मैं को नमाज पढ़ा था, ऐसी नमाज होती है ये है, वो डांटेंगे फिर, तो कहने कुछ नहीं, मैं आगा मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, तवज्जो कर लेंगे। मरहूम काशी ने कहा कि नहीं, क्या मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं का क्या मतलब होता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, तुमने अभी यहाँ पे वजू किया, अंदर गए, नमाज पढ़ी, ये नमाज नहीं थी। कह लेंगे नहीं नमाज नहीं थी। कह लेंगे तो फिर क्या था, कहा मैं अल्लाह को बताने आया था मैं बागी नहीं हुआ हूं। कुछ लोग पहुंच गए हैं। मरहूम काशी के शागिर्द कहते हैं कि उस नौजवान लड़के ने कहा और वो चला गया, आगा घंटों रोते रहे। उनके शागिर्द आ गए, आगा दर्स का वक्त हो गया, तबीयत खराब है, कर नहीं ठीक हूं, आप बीमार हैं, नहीं बीमार नहीं हूं, पहलिया बीमार है, बूढ़े मियां बीवी थे, तो कहा आपकी बीवी बीमार है, कर नहीं, क्या बात है क्यों रो रहे हैं, कब वो जवान तो अल्लाह को बता के चला गया कि मैं बागी नहीं हुआ, मैं अल्लाह को कैसे बताऊं बागी नहीं हुआ। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं। ऐजाने गिरामी बाज़ोकात इंसान के जो अर्ज अदब करने आता है मौला की बारगाह के अंदर, बाज़ोकात ऐसे अफराद होते हैं, इंसान समझता है मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं, जिसे समझ रहा होता है ये कमतर है वो बहुत आगे होता है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं ऐजाने गिरामी, ऐजाने गिरामी ये अर्ज अदब मासूम की बारगाह में जब आए, ये जुमला जब आप दोहराने लगे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का, अशहदु अन्नहु वलियुक, जब आप कहें अशहदु अन्नका, अब आगे आए अल्फाइज़ु बिकरामातिक, मैं दोबारा इसकी वजाहत करूंगा, आगे फिर आएगा, तो मैं अब वो बारीकियों में जाना नहीं चाह रहा, मुझे लग रहा है कि मैं जितना इसको मौजू को फैलाऊंगा उतना मेरे लिए अपने लिए नुकसानदेह साबित होगा। अल्फाइज़ु बिकरामातिक, इस जुमले पर दोबारा गौर कर लीजिएगा, ये भी एक जुमला है जो मासूमीन से मंसूब है, हम भी दोहराते हैं लेकिन हमें हक नहीं है, तवज्जो रहे मजमे की। अल्फाइज़ु बिकरामातिक, छठे इमाम फरमा रहे हैं वो जो कामयाब है तेरी करामतें हासिल करने में। मौला अली को जरबत लग रही है और मौला फरमा रहे हैं फुज़्तु बिरब्बिल काबा, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। ऐज़ाने गिरामी ये कामयाबी, हर आदमी दावा करता है कि मैं कामयाब हूं, कोई कहता है मैंने बहुत पैसा कमा लिया, मैंने बहुत नाम कमा लिया, मैंने बहुत इज्जत कमा ली, मैंने बहुत इल्म कमा लिया, मैंने ये पा लिया, मैंने सब कुछ करने के बाद आदमी समझता है मैं कामयाब हूं, लेकिन ऐज़ाने गिरामी हकीकतन कामयाबी है क्या, ये सिर्फ मौला अली को हक है या अली जैसों को हक है। ये मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं? वी डू नॉट डिजर्व टू से दैट वी आर सक्सेसफुल। हर आदमी चाहता है मैं कामयाबी का पार्ट बनूं, मैं हिस्सा बनूं कामयाबी का, थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा इस बात। हर आदमी का कोई भी नाकामी का पार्ट नहीं बनना चाहता, नो वन वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ अनसक्सेसफुलनेस, एवरी वन वॉन्ट्स टू बी पार्ट ऑफ सक्सेस। हर आदमी चाहता है मैं कामयाबी का, ये प्रोजेक्ट कामयाब होने वाला है मैं भी इसका पार्ट बन जाऊं, ये टीम कामयाब होने वाली है मैं इसका पार्ट बन जाऊं। कोई हारने के लिए नहीं खेलता, कोई हारने के लिए काम नहीं करता, कोई हारने के लिए इबादत नहीं करता, कामयाबी के लिए। लेकिन कोई कोई होता है जो कहे कसम अल्लाह की मैं कामयाब हूं, ये बहुत बड़ी अजमत है। अगर मैं ये बात पहुंचा दूं आज, ऐजाने के रामी खुदा की कसम, छठे इमाम तो यहां तक फरमा रहे हैं कि या लैतनी कुंतु माअक,

लकी, नहस, मनहूस तो सुना हुआ होगा, नहस इसका ऑपोजिट है, सैद और नहस, सुने लोगों ने, फॉर्चून एंड अनफॉर्चून, लकी एंड अनलकी। हम आमतौर से कहते हैं ना कि ये खुशकिस्मत है, ये बदकिस्मत है। अब छठे इमाम मौला हुसैन से कह रहे हैं कि अल्लाह ने आपको खुशकिस्मत बनाया है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, मैं जो आज पेश करना चाह रहा हूं थोड़ी तवज्जो कर लीजिएगा। अजाने ग्रामी, हम ये समझते हैं इस बच्चे की वजह से पैसा आ रहा है, ये काम तवज्जो, जिसने शहीद होना है, मौला फरमा रहे हैं ये सारी कामयाबियां हुसैन की हैं। अजाने ग्रामी, जो हुसैनी बन जाए वो खुशकिस्मत है, जो यजीदी बने वही मनहूस है। जो पहुंच गए, मेरे जुमले पहुंच रहे थे जाने गिरामी। जाने गिरामी, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट हमने दे दिया ना कि भाई लकी यानी पैसे वाला लकी है और जो अनलकी है उसके पास पैसा नहीं है। जाने गिरामी, मौला हुसैन ने पूरा कॉन्सेप्ट बदल दिया है कि यजीद पैसा हो के भी अनलकी है, तवज्जो, हुसैन मजलूम हो के भी लकी है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, मेरी बातें आज क्लियर हो रही हैं क़बीला? आप लोग थोड़ी सी हेल्प कर देंगे ताकि मुझे समझ में आए। यहां सईद, खुदा की कसम, शेख अब्बास कुमी ने ये रिवायत लिखी है सफीनतुल बिहार के अंदर। सफीनतुल बिहार, शेख अब्बास कुमी खातमुल मुहद्दिसीन कहा है, दो इस वक्त के जो हमारे ग्रैंड आयतुल्लाह थे उन दोनों के उस्ताद, आयतुल्लाह खुई आयतुल्लाह खुमैन, दोनों के उस्ताद शेख अब्बास कुमी हैं, दोनों के उस्ताद। और उनकी जिंदगी में उनकी बहुत सी किताबें छप गई थी, मुंतहा अमाल है, मफातिहुल जनान है, बहुत ज़्यादा किताबें। यहाँ तक हमारे उस्ताद शेख अहमद आबदी कौम मुकद्दस के बहुत बड़े आयतुल्ला हैं, अभी तो बहुत बड़े मर्जा बन गए, लेकिन वो कहते थे कि कुछ तलबा उलमा गए तबलीग के लिए, जाने से पहले आयतुल्लाह खोई आयतुल्लाह खुमैनी दोनों से मिले, कहा बताइए आगा एक किताब सफर में लेके जाना चाहता हूँ तबलीग के लिए, बताइए कौन सी किताब ले जाऊँ। तो दोनों ने एक ही जवाब दिया, सफीनतुल बिहार ले जाओ। सफीनतुल बिहार हदीस की किताब है, अलिफ से लेके ये तक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसमें अहदीस हैं। वहाँ पर वो लिखते हैं असईद सईद उन फ़ि बतन उम्मे व शकी शकी उन फ़ि बतन उम्मे, जो लकी होता है ना वो माँ के पेट से ही लकी होता है। पता नहीं इस बात को कैसे पहुंचाऊंगा। शकी और जो अनलकी मनहूस होता है वो अजाने के रामी, हुसैन शुरू से हुसैन होता और हुसैनी शुरू से हुसैनी होते हैं। और अगर कोई किसी और जगह पैदा भी हो जाए, अगर सलाहियत होगी तो हुसैनी बनेगा। नहीं पहुंचा सका, नहीं पहुंचा सका, मैं राजी नहीं। मोहम्मद सब जवाब दे दें भाई, इस बात की थोड़ी सी वजाहत सुन लीजिए। अजाने ग्रामी, जिसमें सलाहियत होगी, पोटेंशियल होगा, वही हुसैनी बनेगा। अजाने ग्रामी, मिसाल के तौर पे मैं मजलिस पढ़ रहा था, किसी बच्चे ने सुना कि मौलाना कह रहे हैं किसी भी चीज को 3 दफा पाक कर लो तो वो चीज पाक हो जाती। उसका शौक तो कुत्ता पालने का, उसने कुत्ता लिया, वालदा ने मना कर, कुछ लोग पहुंच गए, मैंने मिसाल भी कंप्लीट नहीं की है। उसने कहा अम्मी जान मसला हल हो गया, आपने कहा था कुत्ता नहीं पाल सकते, मौलाना ने बताया 3 दफा पाक करो कुत्ता पाक हो जाता है। पाक 3 दफा ही करना पड़ता। जो पहुंच रहे भाई थोड़ी सी तवज्जो। तब बच्चे ने कहा अम्मी जान मैंने सुन लिया, मैं जो है ना बिल्कुल यहाँ पे तो समंदर है पास में, मैं 3 दफा कुत्ते को ना समंदर में गुसल दे के घर लेके आया हूँ। क्या बेटा ये कुत्ता फिर भी पाक नहीं हो, अम्मी जान ये तो दरिया मैंने समंदर में मैंने इसको गुसल दिया है। क्या बेटा मसला तुमने समझा नहीं है, मौलाना ने ये नहीं कहा हर चीज जिसमें सलाहियत हो, सलाहियत हो तो पाक होती है, कुत्ते में सलाहियत ही नहीं है। अजाने ग्रामी, अगर आपसे कोई कहना कोई मासूम के पास बैठा था भी कैसे मुमकिन है, नेक ना बनाओ, कमी मासूम में नहीं है, उस बंदे में सलाहियत नहीं थी। अब पहुंच गए लोग, जाने के नाम बात रोशन हो गई है। जाने एक जल्दी से आयत पेश कर दो।

जो यहां तक मेरे साथ आया मैं फिर शफात कर दूंगा, चले जाओ जिसने जाओ। ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, मैं बैत नहीं कर रहा, इनका मसला आपसे नहीं है, मेरे से, जो जाना चाहता चला जाए। शेख जाफर शुश्तरी कहते हैं कि अगर बुलाना था आशूरा पे तो शब में क्यों कहा चले जाओ, जो पहुंच रहे हैं, जो पहुंच रहे हैं खुदा रा, असर में क्या कह रहे हैं, हल मिन नासरी, जिसने आना है आ जाओ, शब में कह रहे हैं जिसने जाना चले जाओ, मौला अगर बुलाना था तो शब में क्यों कह रहे हैं चले जाओ। शेख जाफर शुश्तरी कहते हैं शब में अपनों में कह रहे थे, जो जाना चाहता चला जाए, कोई नहीं गया, और असर में दुश्मनों में कह रहे थे, जो आना चाहता आ जाए, कोई नहीं आया, नहीं अभी भी सारा मजमा का। क्यों का अल्लाह के वली हुसैन इब्न अली ने क्या किया, शब में अपनों में कहा जो जाना चाहता चला जाए, क्यों, जितने मेरे साथ है ना उन पे अल्लाह का भी सलाम होगा, मलाइका का भी सलाम होगा, अंबिया का सलाम होगा, औलिया का सलाम, औसिया का, मोमिनीन का, सिद्दीकीन का, सालहीन का, सबका सलाम होगा। तो कोई मेरे वालों में ऐसा ना हो जो अल्लाह के सलाम लायक ना हो, अभी चला जाए। और फिर मौला जानते थे मेरे सारे दुश्मनों पे, हुसैन के कातिलों पे, हुसैन पे जुल्म करने वालों पे, हुसैन के दुश्मनों पे अल्लाह की भी लानत होगी, पहुंच गए हैं, मलाइका की भी लानत होगी, अंबिया की, औलिया सब की लानत, मोमिनीन सालहीन। तो अब मौला चाहते थे ऐसा ना हो इन दुश्मनों में कोई ऐसा हो जो लानत लायक ना हो, तो आ जाए। तो उनमें से कोई नहीं आया और अपनों में से कोई नहीं गया, तो मौला समझा ये रहे थे मेरे वालों में कोई बुरा नहीं है और मेरे दुश्मनों में कोई अच्छा नहीं है। अब मेरे जुमले पहुंच गए जाने के नामे, अब ये सईद और शकी समझ में आया है जाने के नामे, जाने के नामी मौला हुसैन समझा ये रहे जो मेरे वाले हैं वो सारे सईद हैं और मेरे दुश्मन सारे शकी हैं, वो सारे मलऊन मनहूस हैं। अजान गिरामी ये जो अल्फाज हैं, यहाँ पे दोबारा वापस आइए, मैं मुकम्मल कर दूँ मज़मून को कि मौला हुसैन फरमा क्या रहे हैं। ये जो छठे इमाम ने फरमाया कि आपके साथ हर सआदत है, अल्लाह ने आपको कामयाब किया है, तो करबला में आने वाले पहले से बाअज़मत थे इसलिए शहीद हुए हैं, और जो दुश्मन थे वो पहले ही से बदबख्त थे। मेरी दरख्वास्त 12वें इमाम से वो मुलहक होगा जो पहले से नेक हो। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, ये लोग समझते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ इन द 11th आवर या 12th आवर, मैं जो ना 12वें घंटे में तैयारी कर लूंगा, और अगर 11वें घंटे में मर गए मैं तो तौबा कर लूंगा। अजान गिरामी की जो कह रहा है मैं इंशाल्लाह तौबा कर लूंगा, देखें जवानी में तौबा करने की तौफीक जरूरी है, बुढ़ापे में तो वैसे दांत टूट जाते हैं, मैं बहुत कुछ कह गया हूँ। शेख सादी शिराजी ने शेर कहा है कि दर जवानी तौबे करदन शिवे ये फयम्बरी, जवानी में तौबा करना और पाक रहना अम्बिया का शेवा है, बुढ़ापे में तो भेड़िया भी कहता है अब मैं गोश्त नहीं खाऊंगा, अब मैं बकरी पे हमला नहीं करूंगा, दांत होते नहीं, पंजे होते नहीं, तो अब तू शिकार क्या वैसे ही नहीं कर सकता। मेरे पता नहीं जुमले पहुंचे या नहीं पहुंचे। अजान गिरामी ये जो इंसान सलाहियत खो दे, हुसैन इब्ने अली ने जमा किया, करबला को सजाया, जानते हैं सिर्फ 72 ने जाना, तो ऐसे लेके जाऊं कि अगर जाफर सादिक भी आए तो कहे अब्बास पे सलाम, अली अकबर पे सलाम, अली असगर पे सलाम, कासिम पे सलाम। अजान गिरामी जो अंबिया और औलिया के सलाम लायक हों वो हुसैनी है। मेरे जुमले पहुंच, अजान गिरामी मैं अब खुद, क्योंकि अगले जुमले पे मुझे थोड़ी सी ज्यादा टाइम चाहिए, मुझे नहीं मालूम कि पढ़ूं से या नहीं पढ़ूं, वह ये वहबाउतहु बेती बिल विलादा, मैं इस जुमले को सुन लीजिए फिर, अब अगर अब ज्यादा टाइम हो गया तो हो गया, अभी तक आई एम विद इन टाइम। मेरी दरख्वास्त है इस जुमले पे गौर करें, ती बिल विलादा, तीब तैयब, ये सारे अल्फाज वही रूट वर्ड एक है कि और अल्लाह ने आपको पाक विलादत से नवाजा है। मैं एक जुमले में मौला के सब कुछ कह गया हूँ। ऐज़ाने गिरामी पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं तो वो नक्शबंदी हैं, सूफी हैं, 70 से ज़्यादा, अब तो 100 से ज़्यादा सिलसिले हैं सूफियों के, तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर थे, नाम नहीं लूँगा ताकि उनके लिए मसला ना मिले, बेचारा मेरे जैसे मारा जाए, तो वो कहने लगे मौलाना मैं सूफी हूँ, हमारे सिलसिले में नक्शबंदी में इमाम सादिक हैं।

तो मैं बहुत पढ़ता था कि भी इमाम सादिक के किसी बेटे का मुझे पता चले कि उनके बेटे, पता चला उनके बेटे एक इमाम मूसा हैं, इमाम मूसा काजिम ने कहना आ रहा था उन्हें इमाम मूसा। तो मुझे, मैंने कहा कि मुझे इमाम मूसा से मुतालिक डिटेल्स चाहिए, तो किसी ने मुझे भेजा 2 सफ़े 4 सफ़े 10 सफ़े, मैंने कहा नहीं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। फिर मुझे किसी ने आपका क्लिप भेजा कि ये 32 मिनट का क्लिप है 7वें इमाम पे, ये शियों के का, फिर मुझे पता चला, फिर मैंने आपको बहुत सुना, तो कहा मौलाना मैं आपके साथ करबला जाना चाहता हूँ। अब जुमला सुन लीजिए उसका, जो जुमला उस क्रिकेटर ने कहा है, शिया नहीं है, वो कहते हैं मौलाना मुझे अब जाके इस बुढ़ापे में अंदाजा हुआ है कि ये जो अली की विलायत है ये बाप से खून में नहीं मिलती, ये माँ के किरदार से मिलती है। हैदर, बारह मुझे अंदाजा नहीं है कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, नारा सही जगह लगा रहे हैं या तीसरी मजलिस से नारा बिल्कुल सही जगह लगा रहे होते हैं। तो ऐजान गिरामी, ये मैं जो जुमले पेश कर रहा हूँ, ये तो ना कि इरेलीवेंट जगह पे नारा लगा दे, नहीं, अल्लाह का शुक्र है ये सब बच्चे समझदार हैं, मुझे नहीं मालूम ये माँ बाप इनको कोई ट्वीट करते हैं क्या करते हैं कि एग्जैक्ट जगह पे बिल्कुल सही जगह पे नारा होता है। ऐजान गिरामी मेरी दोबारा दरख्वास्त है, मैंने कहा कि छेड़ा है, मैं इसको मुकम्मल करूँगा। मेरे भाई मेरे बुजुर्ग सब इस पर गौर फरम, तीबिल विलादा, खुदा की कसम जब मैं ये सोचता हूँ अल्फाज कितने बाअज़मत हैं, छठे इमाम फरमाते हैं कि आपको पाक विलादत नसीब हुई है, जब तक शजरा पाक ना हो। अज़ीज़ाने गिरामी, काफिरों के घर में मासूम पैदा नहीं होते, ये शजरे का पाक होना बहुत जरूरी है। अज़ीज़ाने गिरामी, यहां जगह जगह पे आया है कि जो पाक विलादत वाला होता है वो अली वाला होता है। ये अब उलमा मौजूद हैं, पैगंबर ने फरमाया ना कि अली का दुश्मन नहीं होगा सिवाय जिनके अंदर तीन, दोबारा तीन ही हैं, तीन निशानियां, ये नाबीउल मवद्दा में है, शिया सुन्नी उलमा ने लिखा है, खुदा की कसम मैंने अपने पास से नहीं बनाया, पैगंबर ने फरमाया है तीन बुराइयां जिसमें होंगी वो अली का बुग्ज़ रखता होगा, उनमें से एक है जिसकी विलादत खराब होगी। ऐजाने के नामी, वो बुग्ज़ और कीना रखता होगा अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का। अब समझ में आया, ये लोगों ने तवाफुन निसा, ये कितने मसाइल हैं कि लोगों ने हराम कर दिया कि ऐसा ना हो कि ये हर जगह पे अली अली होने लगे। ऐजाने गिरामी, ये जो बहुत सी चीज़ें हैं ऐजाने गिरामी, ये जो शजरे पाक होने के लिए कहाँ पैम बने, इन बातों का ख्याल रखो, शादी करो, निकाह करो, हमेशा पाक मोमिनात लेके आओ, सिर्फ बीवी ना सोचना, ये सोचना ये मेरे बच्चों की माँ बनने वाली है। मेरे जुमले पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे, ये बुजुर्ग समझ जाएंगे, शायद बहुत से नौजवान इन बातों को ना समझें। ऐजाने गिरामी, सिर्फ खूबसूरती देखे कहीं शादी ना कर ले कोई नौजवान, हमेशा देखे इनके घर में ईमान है या नहीं है, ईमान देखने के बाद उसके अंदर जिसमें सलाहियत हो कि दुनिया के अंदर एक ऐसे बच्चे को लेके आए जो अहले बैत का मानने वाला हो। मैं ऐजाने गिरामी बार बार ताकीद कर रहा हूँ इन अल्फाज के ऊपर कि बतीबिल विलादा, कि जो जगह जगह पे अल्लाह ने कुरान में, अब देखिए मैं बस इसी पे तमाम कर रहा हूँ, जनाब मरियम से अल्लाह ने फरिश्ता भेजे, अल्लाह का फतमत साल बशरन इन्ना ओहैना इला मरियमा रूहाना, दो नबियों की माओ पे अल्लाह ने फरिश्ते नाजिल किए हैं जो अल्लाह ने कुरान में बताए, वह ओहैना इला उम्म मूसा, हमने मूसा की माँ पे वही नाजिल की, जनाब मूसा जनाब ईसा की माँ पे वही नाजिल हुई लेकिन वो नहीं घबराई, तो कैसे मुमकिन है सैयदुल अंबिया पे वही आए और उन्हें बुखार हो जाए। यहाँ कोई पाकिस्तानी लगता है नहीं, दुनियात पड़ी भी होती ना तो पता होता उन्हें मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे पाकिस्तान की दुनियात में बना जाता है कि पैगंबर को बुखार हो गया, ठंडे पसीने आने लगे, जनाब खदीजा ने बुखार उतारा और फिर बुलाया अपने कजन को, मेरा एक मामूजाद भाई है वरका बिन नौफिल, वरका बिन नौफिल, और वो आपको बताएगा कि मसला क्या है, वो पुरानी किताबों का आलिम है, वो आया उसने कहा मुझे लगता है आप आखिरी नबी हैं, यानी मदीनतुल इल्म को वरके बताएंगे आप नबी हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा है हाथ में नज़िल्ला, भाई तवज्जो फरमा रहे मेरे इस बात के ऊपर, दो अंबिया की माओ पे अल्लाह ने कुरान में नाम लेके फरमाया है कि फरिश्ते ना, वह है ना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की माँ पे वही नाजिल की, दूसरे हजरत ईसा की माँ पे वह है ना इला यानी इला रूहाना, सूरह मरियम में रूहाना, तनज्जलुल मलाइकतु वर रूहो, मलाइका और रूह नाजिल होते हैं, ईसा की माँ पे रूह नाजिल हो तो मुसलमान मान ले।

तवज्जो है, शायद मैंने ज्यादा तारीफ कर दी। अज़ीज़ाने गिरामी, आप सब सलामत रहें, ये बच्चे सलामत रहें, इनके माँ बाप सलामत रहें। मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा के लिए जनाबे ईसा ने गवाही दी। अज़ीज़ाने गिरामी, कभी भी बच्चा दुनिया में आते ही नहीं बोलता। अगर यहीं आपके दारुस्सलाम में कोई बच्चा दुनिया में आते कि हेलो डॉक्टर हाउ आर यू, आपका पता नहीं डॉक्टर का वहीं हार्ट फेल हो जाएगा। ये बच्चा कलाम कर रहा है। अब जनाबे ईसा ने कलाम किया था, ईसाइयों ने कहा ईसा है इब्नुल्लाह, दुनिया में आते ही बोलने लगा। तो अब सारे ईसाई हमेशा कहते रहते तुम्हारे नबी ने 40 साल के सिन में कहा मैं रसूल हूं, हमारे ईसा ने गहवारे में कहा, तो अल्लाह ने कहा 16 दिन के ईसा बोले थे, 3 दिन के अली। जिसका जानशीन ऐसा है सोचो नबी कैसे होंगे। अज़ाने किरामी, ये तमाम लबैक या सकें। अज़ाने किरामी, ये अज़मत है। कुरान करीम सूरह मरियम में आयात बता रही हैं दुनिया में आते ही। रिवायात में है कि जनाब सैयदा ने ख़ुद रसूल खुदा से फरमाया, बाबा हसन भी आए लेकिन ये हुसैन

अपने आप को यतीम ना समझना, अभी मामू जिंदा है। बच्ची समझ गई मैं यतीम हो गई। उलमा कहते हैं करीब में एक 4 बरस की बच्ची खड़ी देख रही थी। अगर कोई बच्ची यतीम हो जाए, उसके सर पे शफकत का हाथ रखा जाता है, उसे नई बालियां पहनाई जाती हैं। जब शाम गरीबा आई, बीबी इंतजार में थी मेरे सर पे कोई शफकत का हाथ रखे, मुझे कोई नई बालियां पहनाए। इतने में शिमर आ गया, उसने सर पे ऐसा हाथ रखा, बीबी का बालों को छुड़ाना मुश्किल हो गया। जब उसने बालियां उतारी, बीबी ने रो के कहा चचा अब्बास अजरकुमल अल्लाह। भाई मैं समझ सकता हूं, अगर कोई छोटी औलाद वाला होगा, हमारे घरों में भी बेटियां हैं, हाय मौला की बेटियां, अजरकुमल अल्लाह अजरकुम। भाई मैं रिवायत पूरी नहीं पढ़ूंगा, आप जानते हैं ना मौला हुसैन की बेटी पे बहुत जुल्म हुआ है। अजाने के नामी रिवायत में है, जब मौला हुसैन खैमे से निकले तो मौला ने एक मरतबा आवाज दे के कहा था कि मैं अब ये पढ़ना नहीं चाह रहा था लेकिन ये पढ़ूंगा मजबूरन, कि एक मरतबा देखा कि एक छोटी सी बीबी बाहर आ गई हैं, जुलजना के कदमों से लिपटी हुई हैं। मौला ने बीबी को गले लगाया, कहा बेटी आप बाहर क्यों आई हैं? कहा बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा बेटी आपको प्यास लगी, मैं पानी लेने जा रहा हूँ। कहा बाबा जब से चचा अब्बास गए हैं मेरी प्यास बुझ गई है, बाबा मुझे प्यास नहीं है, मत जाइए। बाबा जो जाता है ना वापस नहीं आता। मौला ने बहुत खुल के फरमाया, कहा बेटी मैंने अपने बचपने में नाना से वादा किया था, नाना मैं आपका दीन बचाने के लिए जान कुर्बान कर दूंगा, बेटी मैं अपनी जान कुर्बान करने जा रहा हूं। कहा बाबा अब मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन बाबा आप जब भी मुझे सीने पे सुलाया करते थे, आप फरमाते थे इस्लाम में बेटों का भी हिस्सा है बेटियों का भी हिस्सा है। बाबा आप भैया अली अकबर को साथ ले गए, भैया अली असगर को साथ ले गए, बाबा बताइए मेरे हिस्से में क्या आया है? मेरे बहुत जय्यद उस्ताद का जुमला है, मौला ने कुछ खाके करबला उठाई और जनाबे सकीना के सर में डाल दी। बीबी ने कहा बाबा ये क्या किया आपने? मौला ने फरमाया बेटी आपके हिस्से में यतीमी आई है, आपके हिस्से में असीरी आई है, शाम की कैद आई है। मैं कहूंगा मौला बता दीजिए शिमर के तमाचे। अजरकुम अल्लाह। बीबी ने फरमाया, कहा बाबा मुझे आखिरी मर्तबा सीने पे सुला लीजिए। मौला खाके करबला पे लेटे छोटी सी बच्ची को सीने पे सुलाया, एक मर्तबा प्यार किया और जुमला कहा, का बेटी आज रात जहां माँ सुलाए सो जाइएगा, जिद ना कीजिएगा, मुझे बाबा के पास जाना है। बेटी मेरे पास सबसे ज्यादा जुल्म आप पे होगा, बेटी कभी भी शिकवा ना कीजिएगा। बस भाई मैं शहादत के 2 जुमले पढ़ना चाहता हूँ, मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए हैं। मैं जानता हूँ ये मुसलसल रोना बड़ा मुश्किल काम है, हमारे आंसू खुश्क हो जाते हैं, सीने में दर्द होने लगता है, कमर झुक जाती है। ये मुसलसल रोना मौला सज्जाद का काम है, ये मुसलसल रोना जनाबे जैनब का काम है। अजरकुम अल्लाह। बस भाई आखिरी जुमला, मरहूम आतुल्लाह इश्तिहारदी का जुमला सुन लीजिए, इसी पे तमाम। जब उन्होंने कहा जिल्द नंबर 3 सोगनामा आले मोहम्मद में, एक मरतबा जनाब सकीना ने ख्वाब में देखा मौला हुसैन तशरीफ लाए हैं, बाहें फैला के कहते मेरी बेटी मेरे पास आ जाइए। बीबी आगे बढ़ी, मौला के गले लगी और एक मरतबा कहने लगी बाबा मुझे छोड़ के मत जाइएगा, बाबा आपके बाद मुझे तमाचे लगे। बीबी ने अपने मसाइब बयान किए, बीबी बहुत रोई, कहा बाबा मुझे छोड़ के मत जाइएगा। कहा नहीं बेटी मैं लेने आया हूँ। अचानक बीबी की आंख खुल गई। आगा इश्तिहारदी कहते हैं बीबी ने रात को रोना शुरू किया और आवाज दे के कहा अम्मा मेरे बाबा अभी यहीं थे, बाबा मेरे पास से कह रहे थे मैं लेने आया हूँ। बस बीबियों ने सुना, सारी बीबियां रोने लगी। एक मरतबा यजीद मलऊन की आंख खुली, उसने पूछा क्या बात है, ये बीबियां क्यों रो रही हैं? कहा एक बच्ची है जो अपने बाबा को याद कर रही है। पूछा कौन है उसके बाबा का? उसके बाबा का नाम हुसैन है। कहा जाओ उसे हुसैन का सर दे दो।
ایک تشت میں مولا حسین کا

सर रखा, उस पे एक कपड़ा डाला, कुछ लोग तस को उठा के लेके आए। जब तस लाए ना तो आकाश तिहारी कहते हैं, जनाबे सकीना समझी ये पानी लाए हैं। बीबी ने कहा मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे बाबा के पास जाना है। आने वाले ने एक मर्तबा तस से कपड़ा हटाया, बीबी ने बाबा के सरे अकदस को देखा, रो के कहा बाबा ये किसने आपकी रगों को काटा। बाबा जब आप खैमे से गए थे रगे कटी हुई नहीं थी। एक मर्तबा बीबी रोते रोते चुप हो गई, जमीन पे गिर गई। मौला सज्जाद ने आवाज दी, फूफी अम्मा मेरी बहन से बाबा का सर ले लीजिए, मेरी बहन आजाद हो गई। अला लअनतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ। हाथों को बुलंद कीजिएगा। परवरदिगारा तुझे वास्ता उस भाई का जिनके गले में तौक था, हाथों में जंजीरें थी, एक छोटी सी बहन का लाशा उठाया। आप जानते हैं ना, कब्र में एक जनाजा देने वाला होता है, दूसरा कब्र में जनाजा उतारने वाला। मेरा दिल कहता है जैसे मौला अली ने कहा था ना, या रसूल अल्लाह अपनी अमानत वापस ले लीजिए। मेरा दिल कहता है मौला सज्जाद ने भी कहा होगा, बाबा अपनी बेटी का जनाजा ले लीजिए। परवरदिगारा तुझे वास्ता जिंदान में कभी कब्रें नहीं बनाई जाती। परवरदिगारा नन्नी सी कब्र का वास्ता। हमारे बाज़ उलमा ने लिखा ये जो जहाँ सैयदा रुकैया लिखा है ना दरबार के पास, वही बाजार में जिंदान था जहाँ बीबी को दफनाया गया है। परवरदिगारा शेखुर रईस शेख अब्बास किरमानी ने भी जुमले लिखे हैं, अब मैं तफसील में नहीं जाऊँगा। परवरदिगारा तुझे वास्ता जनाब सकीना की मजलूमियत का 12वें इमाम के जहूर में ताजील फरमा, दुनिया से जुल्म का खात्मा फरमा, ईरान इराक शाम के रोज़ों की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा मिलियंस लाखों 1 करोड़ से ज़्यादा हमारे ज़ायरीन इस वक्त मशी कर रहे हैं, परवरदिगारा ज़ायरीन की हिफाजत फरमा। आप जानते हैं शदीद गर्मी है, लोगों ने बताया है कि इस वक्त 50 के करीब टेम्परेचर है। परवरदिगारा लेकिन इन सब ज़ायरीन को मुसलसल रास्ते में शरबत मिल रहा है। हाय मौला हुसैन की बहनें, हाय मौला हुसैन की बेटियां, जिन्हें रास्ते में भी कभी पानी नहीं मिला, जब थोड़ा पानी मिलता तो बीबी कहती पहले बच्चों को पिला दो फिर हम पानी पियेंगे। परवरदिगारा तो जवाब सब बीबियों की मजलूमियत का हमारे मकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा, इस इमाम बरगा को तरक्की इनायत फरमा। परवरदिगारा जहाँ जहाँ मोमिनीन बसे उनके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, मकरूज़ों के कर्ज़े अदा फरमा। परवरदिगारा हमारे तमाम मरीज़ों को सेहत कामला अजला इनायत फरमा, जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द न फरमा। परवरदिगारा ईरान को फतह नुसरत नसीब फरमा। परवरदिगारा इस वक्त ईरान में, इराक में, शाम में, लबनान में, बैरूत में, गज़ा में, फ़िलिस्तीन में, बहरीन में, यमन में और अफ्रीका के ममालिक में हालात ख़राब है, सब की हिफाजत फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़ मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। मातमे हुसैन।

इस मौके पर कोशिश की गई कि आकाए खामनाई का कत्ल कर दिया जाए। उस दिन आकाए खामनाई डाइस के सामने खड़े लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे। तकरीर के दौरान माइक तब्दील किया गया और इनके सामने डाइस पर रख दिया गया। सबने समझा कि ये मस्जिद का ही माइक है। कुछ ही मिनट बाद एक जोरदार धमाके से मस्जिद लरज उठी।

अमीरुल मोमिनीन के दौर में भी औरत न सिर्फ अरबों में बल्कि तमाम इंसानी मुआशरों में मजलूम थी। ना उसे पढ़ने देते थे, ना ही ऐसी महफिल में आने देते थे जहां वो सियासी मसाइल से आगाही हासिल कर सके। ये नामुमकिन था कि दूसरे

अगर 26 जून को आकाए खामनाई बम धमाके में मारे जाते, शहीद हो जाते। ये तो इस्लाम पसंद लोगों की सकाफत और ईमान का एक हिस्सा है। इनके नाम के साथ शहीद का लफ्ज लगा दिया जाता। शहीद अली खामनाई हिजबे जमहूरी इस्लामी की रिवायत में मौत की ख्वाहिश शहादत के रास्ते पर होती है। इस जुमले को आप उनके दुरूस और जलसों में बहुत सुनेंगे और फिर इनके कायदीन मुमताज लोगों और सिपे सलारों की वसीयत नामों में यही बात आप पढ़ेंगे। नबुवत, इमामत और मुमताज उल्मा के बाद ये मुकद्दस तरीन मुकाम है। बहुत कम इत्तेफाक होता है कि इस्लामी तहरीकियों के कारकुनों या उनके किसी कायद की तरफ से ये बात सुनी जाए कि वो परवरदिगार के हुजूर में अवामी खिदमत जारी रखने की दुआ करें। खुदाया अभी मेरी रूह कब्ज ना फरमा, क्योंकि मैं अभी इस सआदत के मैदान को नहीं छोड़ना चाहता। इनकलाब और तारीख के इस मुश्किल तरीन मरहले पर ऐसी दुआ हैरान कुन है। खामनाई मौत को सआदत तसव्वुर नहीं करते, बल्कि उसे फराइज की अदायगी से फरार तसव्वुर करते हैं। जब इन्हें होश आया, इन्होंने खुदावंद से दुआ की कि इन्हें जिंदा रखे ताकि रूह उल्ला और उनके दोस्तों के हमरा इस जिहाद को जारी रख सके। खामनाई की नजर में हकीकी सआदत ये नहीं कि दर्जाए शहादत तक पहुंच

0: नफ्त शहर भी हमला आवरों के कब्जे में चले गए थे। इसी तरह कसरे शीरीन और सुमार भी इनके कब्जे में था। दूसरी जानिब इनकलाब मुखालिफ मुसल्ला गिरोह कुर्दिस्तान और मगरबी आजरबाईजान में अपनी कार्रवाइयां कर रहे थे।
1: दसफूल अहवाज वगैरह से मुसलसल मरकज में टेलीफोन कॉल्स आ रही थीं और वो कह रहे थे कि यहाँ वसाइल की कमी है, अफरादी कुव्वत और जंगी सामान की कमी है। मेरे जहन में आया कि मैं एक काम कर सकता हूँ, दसफूल चला जाऊँ और वहीं कयाम करूँ। इसके लिए ज़रूरी था कि इमाम से इजाज़त लें, उनकी इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता था कि मैं चला जाऊँ। लिहाजा जमरान गया, कमरे में पहुँचा, कमरे में देखा कि कुछ लोग बैठे हैं, मरहूम चमरान भी बैठे थे। मैंने इमाम खुमैनी से कहा, मेरा ख्याल है कि अगर मैं जंगी इलाके में चला जाऊं तो मेरे यहां रहने से वहां होना ज़्यादा मौसर है, आप इजाज़त मरहमत फरमाएं ताकि मैं चला जाऊं। इमाम ने बिला तामुल फौरी कहा, हाँ हाँ आप चले जाएं। यानी इसके बरअक्स जो हम सोच रहे थे कि इमाम कहेंगे नहीं ऐसा है नहीं वैसा है, बगैर किसी सवाल जवाब के कहते हैं हाँ हाँ जाएं। जब इमाम ने मुझे कहा आप चले जाएं, मैं बहुत खुश हुआ। इतने में मरहूम चमरान बोले, आका मुझे भी इजाज़त दें, मैं भी इनके हमराह जाऊंगा। कहने लगे आप भी जाएं। मैंने मरहूम चमरान की तरफ देखा और कहा, तो फिर उठें चलें, किस चीज़ का इंतज़ार है, उठें चलें। हम वहां से बाहर आए, जोहर से पहले का वक्त था। मेरा इरादा था कि उसी वक्त सफ़र शुरू करें। उन्होंने कहा, नहीं असर तक ठहर जाएं। मैं चूंकि अकेला था और किसी के साथ नहीं जाना चाहता था, लिहाजा मैं सफ़र के लिए तैयार था, लेकिन उनके पास कुछ अफराद थे। जब हमने सफ़र शुरू किया तो 60-70 लोग उनके साथ तैयार थे, जिन्होंने उनके हमराह मशकें और तैयारी कर रखी थीं, जिन्हें मरहूम चमरान अपने हमराह ले जाना चाहते थे। उन्हें इकट्ठा करने के लिए वक्त दरकार था। मुझसे कहा, आप असर तक इंतज़ार कर लें और फिर दसफूल के बजाय अहवाज जाएंगे, अहवाज दसफूल से बेहतर है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वो मुझसे बेहतर जानते थे, हर चीज़ से आगाह थे, लिहाजा मैं राज़ी हो गया। वहाँ पहुँचते ही पहली रात मरहूम चमरान ने अपने ग्रोह को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, हम अभी कार्रवाई के लिए चलेंगे। मैंने पूछा, कौन सी कार्रवाई? कहते हैं टैंक शिकार करने। मेरे पास भी एक क्लाशनकोफ थी, मेरी अपनी जाति क्लाशनकोफ थी, मेरे पास ही थी। मैंने पूछा, मैं भी आऊँ? कहते हैं हाँ, इसमें क्या मसला है, आप भी आ जाएं। मैंने अपना अमामा अबा और कबा वगैरह को एक तरफ रखा, मुझे एक पुराना ढीला ढाला फौजी यूनिफॉर्म दिया गया, मैंने वो पहना और रात के अंधेरे में उनके हमराह चल पड़ा।
2: तो
3: मुसल्लत जंग के दौरान और इब्तदाई महीनों में मेरे ख्याल में शहरियोर का महीना था। अहवाज शहर के करीब तहाबान में शहीद चमरान की सरबराही में मैं मुखालिफीन के साथ स्ट्रीट वॉर के लिए मंसूबा बंदी करने वाले ग्रोह के हमराह था। आकाए खामनाई ने महाज़े जंग पर मौजूदगी के दौरान कंट्रोल रूम में अपना एक दफ्तर बना लिया था। एक रात में 5 अफराद के साथ इलाके की शनासाई के लिए बाहर निकला। हम घने दरख्तों में पहुंचे, नहर की दूसरी जानिब से हमने अचानक एक आवाज़ सुनी। हम कुछ नहीं देख पा रहे थे, हमने ख्याल किया कि वहाँ दुश्मन है। उस तरफ वालों ने भी यही ख्याल किया कि हम दुश्मन हैं। हमने फौरन दरख्तों की ओट में पनाह ली और फायरिंग के लिए पोजीशन ले ली। उसी लम्हे हमें मालूम हुआ कि दूसरी तरफ आकाए खामनाई हैं। वो हमसे पहले एक ग्रोह के हमरा शनासाई के लिए निकले थे। अलबत्ता ये जगह शनासाई के लिए मुनासिब नहीं थी। हमें ये भी पता नहीं था कि ये इलाका दुश्मन के कब्जे में है या नहीं। इसके बावजूद हमसे पहले ही एक ग्रोह के हमरा शनासाई के लिए निकल आए थे।
0: आगए खामनाई और चमरान का ये इकदाम बाइस बना के शहरियों के राबते के लिए एक जंगी मरकज बना दिया जाए। इनकलाब मुखालिफ ग्रोहों के साथ जंग का सिपह सालार मुस्तफ़ा चमरान थे। फौजी मरकजी इलाके में मौजूदगी के दौरान वो इनके ग्रोहों से लड़ते रहते थे। सैयद अली खामनाई अगले मोर्चों पर कई महीने तक चमरान के फौजी दस्ते के हमरा जंग करते रहे। इलावा अजी उन्होंने अपने काम को 3 नुकात पर मरकूज किया। नोखेज सिपाह के लिए मुनज्जम फौजी दस्तों और असलहे की तरसील कर

0: निजाम बनाना, फौज को शहंशाही होने के बहाने से खत्म करने के नारे की मुखालफत, फौज और सिपाह के दरमियान हम आहंगी को बढ़ाना।
1: मेरे पास उस दौर की बहुत सी तल्ख यादें हैं। अलबत्ता मैं आपको बताऊं कि उस दौर में सिपाह में जरूरी नज़म ना था। आज आप जिस सिपाह को देखते हैं 1980 की सिपाह के साथ एक जैसा नहीं कहा जा सकता कि जिसे हम कहें पहले छोटा इदारा था अब बड़ा इदारा बन गया है, या उन दिनों में सिपाह कमजोर थी और अब ताकतवर हो गई है। नहीं, बिल्कुल ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। उस दौर में सिपाह एक तरबियत याफ्ता अस्करी फौज ना थी, जंग के लिए आमादा ना थी, उसके इदारे नहीं थे। पहली मरतबा हम अहवाज में बैठे और सिपाह का एक अंदरूनी इंतजामी ढांचा बनाया। मैं उस इजलास में शरीक था। मैंने वहाँ कुछ सवाल किए। दर हकीकत मेरे सवाल कुछ तजावीज थी। कागज पर मैंने अपने सवालों की जगह तजावीज लिखा, जाहिर में सवाल और बातिन में तजवीज। वहाँ मैं कुछ उनवानात को सामने लाया। उनका खुलासा ये था कि सिपाह क्यों इंतजामी ढांचा नहीं बना रही, क्यों अस्करी दर्जा बंदी नहीं कर रही। उन दिनों हमारी सोच यहाँ तक नहीं थी कि सिपाह लश्कर भी बना सकती है, ज्यादा से ज्यादा एक अस्करी ग्रोह तक सोच थी।
0: बाएं बाजू की जमातों ने जंग के दौरान फौज को खत्म करने का नारा लगाया, इस इल्जाम में कि ये शाही फौज और मुल्क के लिए खतरनाक है। इस पर एतबार नहीं किया जा सकता। आकाए खामनाई ने सिपाह में इमाम के नुमाइंदा होने की हैसियत से फौज खत्म कर देने की तजवीज को मुस्तरद कर दिया। आपने सरकारी फौज और नई नौ आमो सिपाह को आपस में हम आहंग करने के लिए कई एक इकदाम किए और आगे बढ़े।
1: वो अफसर जो मेरे पास आता है और रोता है, आंसू बहाता है, इल्तमास करता है कि मुझे रात के हमले में साथ ले जाएं, शायद मैं भी शहीद हो जाऊं, वो इसी फौज का अफसर है।
2: मैं कई इजलासों में शरीक था जहां मैंने खुद मुशाहिदा किया कि आकाए खामनाई ने किस तरह फौज और सिपाह के अफसरान को एक ही कमरे में इकट्ठा कर रखा था। वो दोनों से कह रहे थे कि मुख्तलिफ कार्रवाइयों के लिए नक्शे तैयार करें, फिर आप दिफाई कौंसिल के रुकन और सिपाह में इमाम खुमैनी के नुमाइंदे होने की हैसियत से अपने अहकामात सादिर करते थे। आप बेहतरीन नक्शे का इंतखाब करते और फिर इस पर मंसूबा बंदी करते, जो कि फौज और सिपाह के दरमियान अच्छे रवाबित पनपने का बाइस बना। दो तरफ के अफराद अपनी मर्जी और खुशी से आकाए खामनाई की पैरवी करते थे। आपने हमेशा कहा, हमें फौज की जरूरत है। आपने फौज और सिपाह दोनों को यकसां तौर पर मजबूत बनाने की कोशिश की।
0: इस अरसे में आकाए खामनाई ने तेहरान से दूरी इख्तियार नहीं की और पहले की तरह इमाम जुम्मा और तर्जुमान इनकलाब के फराइज अंजाम देते रहे।
1: शायद पहली मर्तबा था कि मैं मुहाज़े जंग से वापस आया और सीधा इमाम की खिदमत में चला गया। मैं दरवाजे पर बूटों के तस्मे खोल रहा था तो इमाम खिड़की से मेरी हालत देख रहे थे। मैंने फौजी लिबास के ऊपर अबा पहन रखी थी। मैं इमाम के करीब पहुंचा और दस्तबोसी की। इमाम ने खुद ही कहा, एक वक्त में आपका ये लिबास अदब और अखलाक के खिलाफ था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपको अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा इमाम खुश हैं। मेरे दिल में किसी हद तक शको शुबा था। जब मैंने पहली मर्तबा अहवाज में आलम दीन वाला लिबास तब्दील किया और फौजी लिबास पहना, उस वक्त भी मेरे जहन में था कि ये काम ठीक है या नहीं, लेकिन जब मैंने देखा कि वो मुस्कुराए और मेहरबानी की तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो खुश और राजी हैं।

0: ईरान की तरफ से जंग शुरू करने से पहले आका खामनाई और इस्लाम पसंदों ने कोशिश की कि सारे इख्तियारात बनी सदर को दे दिए जाएं, ताकि वो दो ग्रोहों के दरमियान हर तरह के सियासी इख्तलाफ से दूर रहते हुए जंग की कयादत करे।
1: मैं सैयद बनी सदर को एक ही नसीहत करूंगा, और यही सबका मकसद होना चाहिए। दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है।
0: सबसे वाज़े इकदाम बनी सदर को मुसल्ला अफवाज की कयादत करने का पूरा इख्तियार देना है।

0: इस नतीजे पर पहुंचे कि मौजूदा सूरत-ए-हाल हमारे सियासी मसाइल से अलग नहीं है। इसमें फैसले करने के लिए 100% हम आहंगी बेहद जरूरी है। लिहाजा बेहतर यह है कि यह जिम्मेदारी मुल्की सदर को सौंपी जाए। इमाम ने मुआफ़िकत कर दी है और अहम बात यह है कि इसका ऐलान भी कर दिया है। हमारी नज़र में मुसल्ला अफवाज के इंतजामी मामला ठीक रखने की खातिर मौजूदा नाजुक हालात और इनकलाब के तहफ्फुज़ में ये बेहतरीन फैसला था।
1: बाजरगान की हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद वजारत दिफा का कलमदान आकाए खामनाई के हवाले किया गया, लेकिन उन्होंने बनी सदर की सदारत के फौरन बाद ये ओहदा छोड़ दिया। सब ने इस बात पर इत्तफाक कर लिया था कि किसी मुखालफत के बगैर बनी सदर को खुला मैदान दिया जाए।
0: मैंने इस्तीफा लिख दिया और जनाब बनी सदर ने मेरे इस्तीफे का खैर मकदम किया और मैंने फरवरी के शुरू में पहली या दूसरी तारीख थी कि वजारत दिफा का ओहदा छोड़ दिया।
1: सितंबर 1980 तक जून 1981 बनी सदर के माजूल होने तक यानी 10 महीने तक बनी सदर ईरानी मुसल्ला अफवाज का सरबराह था। इस दौरान इमाम आकाए खामनाई को दिफा कौंसल और सिपाह में अपना नुमाइंदा तकर्रर करते हैं। इस अरसे में आकाए खामनाई मुहादे जंग पर नाजिर की हैसियत से मौजूद थे। नुमाइंदाए इमाम और इमाम जुम्मा तहरान के उनवान से उनकी रूहानी मौजूदगी उन्हें वाकयात पर असरअंदाज होने की इजाजत नहीं देती थी। ईरानी मुहाज पर इब्तदाई महीनों में जंग का जवाब सिर्फ बनी सदर के दस्तखत से ही मुमकिन था।

0: बासी फौज ने दो शहरों आबादान और खुर्रम शहर का मुहासरा तंग कर दिया था। इसके बावजूद मुहासरे के दौरान सिपाह ने सख्त मुकाबला किया। बनी सदर की सरबराही में मुसल्ला फौज की तरफ से सिपाह को अफरादी कुव्वत या हथियारों की मदद नहीं की गई। सिपाह के पास अफरादी कुव्वत की कमी थी। फौज के तोपखाने ने सिपाह की जानिब से किसी इलाके को आजाद करवाने या हत्ता अकब नशीनी करने में भी पुश्त पनाही नहीं की थी। बनी सदर चुपचाप खुर्रम शहर पर कब्जा होते हुए देख रहा था।
1: तोपखाने की तरफ से पुश्त पनाही तो छोड़ ही दें। अगर कभी ये कहा जाता कि सिपाह के जवान आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे मौके पर फौज का तोपखाना उनकी पुश्त मजबूत करे, तो ये बात किसी सूरत काबिले कबूल ना थी। अगर कभी ऐसा हो जाता, एक मौजजा शुमार किया जाता था। अगर सिपाह को एक दो फौजी मार्टर गोले फेंकने वाले दे दिए जाते, तो ये एक गैर यकीनी वाकया था। एक अजीज ने मुझसे दरख्वास्त की और मैंने भाग दौड़ करके उसकी दरख्वास्त पर अमल दरामद शुरू करवा दिया, तो वो फूले नहीं समा रहे थे कि उन्हें कुछ गोले मिल गए हैं। आप मुलाहिजा करें कि इतनी बड़ी जंग में सिर्फ 4-5 गोलों का क्या असर हो सकता था।
0: रहबरे इनकलाब रूहुल्लाह खुमैनी ने तमाम मुसल्ला अफवाज और दूसरे सियासी इंतजामी इदारों के सरबरा

0: होने की हैसियत से दिफाई कौंसिल में अपने नुमाइंदा सैयद अली खामनाई के जरिए बनी सदर को एक खत लिखा।
1: इसका छठा नुक्ता यह है कि आबादन और खरमशहर के मामले में मैं देख रहा हूं कि हुकाम की जानिब से सुस्ती का मुजाहरा किया जा रहा है। इमाम ने फरमाया, अगर नहीं कर सकते तो मुझे बताओ ताकि मैं खुद इस बारे में फैसला करूं। मुझे हर सूरत इस्लाम और इस कौम को जवाब देना है। ये ऐन इमाम के ही अल्फाज हैं जो मैंने वहाँ लिख दिए थे। और फिर मैंने जनाब बनी सदर को टेलीग्राफ भेजा। जनाब बनी सदर ने इसके जवाब में उसी शब टेलीग्राफ किया। ये जवाब अगली सुबह मुझे मौसूल हुआ। उन्होंने इसमें बहुत सख्त लहजा अपनाया था। उनके टेलीग्राफ की इबारत मेरे पास मौजूद है। ये जो मैंने उनसे सवालात और इजहारात किए थे, इससे वो सख्त परेशान और गमजदा हुए और कर्ज ख्वाह की तरह गुस्से में थे कि आपने क्यों मुझे इस किस्म का टेलीग्राफ किया है।
2: महतरम नाज़रीन, मैं शहर खून यानी खुर्रम शहर से बात कर रहा हूँ। वो शहर जिसके बहादुर शहरियों ने हमारी जाबाज और पासदार सिपा के शाना बशाना इस ईरानी सरजमीन के एक एक इंच का दिफा किया है।
0: खुर्रम शहर मुसल्लत जंग और मुकद्दस दिफा के दिनों की एक निशानी है। ईरानी इस शहर को खून से रंगीन शहर कहते हैं। इस जमीन पर जानसारी की ऐसी दास्तानें लिखी गईं जो लोगों के जहनों में कुंदा हो चुकी हैं।

0: क्या नाम है तुम्हारा?
1: मेरा नाम सनाज है।
0: कोई पैगाम नहीं दोगी?
1: किसके लिए?
0: इमाम खुमैनी के लिए।
1: मेरा इमाम के लिए पैगाम है कि आप परेशान ना हो और गम ना करें, वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। जब हम उन्हें टेलीविज़न में देखते हैं तो हमें रोना आता है। आप इस तरह परेशान होंगे तो हम भी परेशान हो जाएंगे।
2: खुर्रम शहर पर कब्जा और जुनूबी सूबे की जानिब बासी फौज की पेश कदमी ने अवामी गमो गुस्से को बढ़ा दिया। 10,000 ईरानी जवानों ने बसीज और सिपाह के मराकज में अपना नाम लिखवाया। जुनूबी तेहरान के शहरी जौग दर जौग फौज में शामिल होने के लिए बाहर निकल आए।

0: जिस कदर बनी सदर हिजबे जमहूरी इस्लामी और सिपाह पासदारान से दूर हो रहा था, उसी कदर वो मुजाहिदीन खल्क और उसके कायदीन मसूद रजवी से करीब हो रहा था। ये वो अंदाज था जिससे सदर की कारकर्दगी का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता था, जो कि 5 मार्च 1981 में बिल्कुल वाजे हो गया था। उस वक्त और बासियों के साथ जंग के दौरान बनी सदर ने मुहाजे जंग को छोड़ा और तेहरान पहुंच गया ताकि अपने मजहबी मुखालफीन पर सख्त तरीन सियासी हमले कर सके।
1: मैं आप मुजाहिद आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं।
0: कौमी मुहाज, जबहे मिली और तहरीक आजादी के रूहानी बाप डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक की याद मनाने के मौके पर बनी सदर ने बराहे रास्त हज़्बे जमहूरी और सिपाह पर हमला किया। इसी बिना पर 5 मार्च के दिन को इनकलाब की तारीख में यौम फितना का नाम दिया जाता है।
1: बसीज और सिपाह इनकलाब इस्लामी के लोगों को देखें, वो किस किस्म के इंसान हैं। अगर आप इनमें से नहीं हैं तो इनसे दूर रहें, ताकि मैं आवाम से कहूं कि खुद इनका एहतसाब करें। इन्हें यहां से बाहर निकाल दो, इन्हें यहां से बाहर निकाल दो। और मेरी मुराद सिपाह इनकलाब के लोग हैं।

मोहम्मद हुसैन बहेश्ती, हिजबे जमहूरी इस्लामी के सरबरा चीफ जस्टिस के, जिन्होंने आइन और विलायत फकीह के शिख लिखने में बुनियादी किरदार अदा किया, वो जो अवामी अक्सरियत की निगाह में इमाम खुमैनी के बाद इनकलाब की दूसरी शख्सियत थे। ये सब कुछ काफी है ताकि ये मर्द बनी सदर और मुजाहिदीन खल के नारों और तनकीद का निशाना बनाया जाए।

0: असलियत और ओहदे से बर्खास्त करने या ना करने के मौजू पर पार्लियामान का इजलास तलब किया गया।
1: भाइयों, आपको मालूम होना चाहिए कि बनी सदर और उसके साथियों के पास ऐसा कुछ कहने को नहीं है जो उन्होंने पहले ना कहा हो। हम हैं कि जिनके पास हजारों बातें ऐसी हैं जो अभी तक नहीं कही गईं। 100 मरतबा मैंने लबकुशाई की, लेकिन वो बातें हरगिज ना निकाली जिनकी वजह से मेरे सीने से होंठों तक खून उबल रहा था। हम हैं कि अगर बात करें तो कई एक पोशीदा हकायक से पर्दे उठेंगे। हमने इमाम के एहतराम में कुछ नहीं कहा। अब भी अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी वजह ये है कि इस हद तक इमाम ने फरमाया है, वरना फिर भी हम खामोश रहते।
2: पार्लियामान में मौजूद अराकीन की तादाद 190 है। जनाब, बनी सदर की नाअहलियत के हक में डाले गए वोटों की तादाद 177 है।
0: इनकलाब की कामयाबी को 2 साल और 4 महीने गुजर चुके हैं। उभरते हुए इस्लामी निजाम ने अभी अपने पांव पर खड़ा होना नहीं सीखा। मुहाज़े जंग से बासियों की पेशकदमी और सरहदी शहरों के मुहासरों की खबरें आ रही हैं। दूसरी जानिब ईरानी अफवाज हमलों में पै दर पै शिकस्त खा रही हैं। दाखली तौर पर खाना जंगी का मुशाहिदा कर रहे हैं और इस इस्लामी निज़ाम की सरपरस्ती करने वाले फकीह 81 साल के हो गए हैं। इनके शागिर्द यके बाद दीगरे शहीद और मजरूह हो रहे हैं। मुतहर्री और बहशती की शहादतें रफसंजानी और खामनाई का मजरू होना इमाम के जख्मों की तकलीफ और उनके गमों की शिद्दत को बढ़ा रहा था।
1: लड़ते रहो मजबूती और साबित कदमी के साथ। ये सारे वाकयात इसलिए हो रहे हैं ताकि आप अपनी असल जंग में शिकस्त खा जाएं। जिहाद की तरफ आगे बढ़ो। फौजी लोग नक्शे तैयार करें। तमाम मुतल्लिका अफसरान अनथक जिम्मेदारियों को संभाल लें। तमाम मुसल्लह अफवाज, सिपाह पासदारान, जंगी मामलात के जिम्मेदारान और तमाम अफराद एक लम्हा भी इस जंग को रुकने ना दें। अगर ये काम हो गया तो दुश्मन और उन तमाम वाकयात का मुंह तोड़ जवाब होगा।
3: हम आपकी सेहत और सलामती के लिए दुआगो हैं।
1: परवरदिगार आपकी तौफीकात में इजाफा करे और कामयाबियां अता फरमाए। खुदा हाफिज़।